103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है एफएम शिमला। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 6 बजने को हैं। समाचार के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
1: साथ में विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष

0: 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रैप बाय शगुन चोपड़ा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 विल कम इनटू फोर्स अक्रॉस रूरल इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे। द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सेड दैट द

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम हिमांजलि। जो परमात्मा अंदर विराजमान है वही सर्व में व्याप्त है। सबके शरीर अलग अलग हैं लेकिन ईश्वर तत्व सब में एक जैसा है। अनेक आकार धारण करने वाला परमात्मा एक जैसा ही है। ईश्वर अलग अलग नहीं है, उसके आकार अलग अलग हैं।

FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम हिमांजलि। जिनकी करुणा का प्रसार क्षेत्र जितना अधिक होता है, श्री भगवान के साथ उनका तादात्म्य भी उतना ही गंभीर होता है।

कार्यक्रम हिमांजलि में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है FM शिमला। आइए सुनते हैं मानस गान।

कि उसका वध शिव जी के पुत्र द्वारा ही संभव हो सकेगा। पार्वती ने शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की है, किंतु शिव अखंड समाधि में बैठे हैं। अतः ब्रह्मा ने कामदेव द्वारा शिव जी की समाधि भंग कराने का परामर्श दिया। देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव की स्तुति की। तब जाकर विषम 5 वाणों और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवगण की विपत्ति की कथा और अनुरोध सुनकर कामदेव को हंसी आई, क्योंकि वो जानता था कि शिव की समाधि भंग करके उसके प्राण नहीं बचेंगे। फिर भी परमार्थ के हित में अपनी बलि देने के लिए वह सहमत हो गया। पुष्प के अपने धनुष तथा वसंत आदि सहायकों की सहायता से कामदेव ने समस्त संसार में अपना प्रभाव फैलाकर स्त्री पुरुष संज्ञा वाले सभी चर अचर प्राणियों को काम के वश में कर दिया।

अभी आप सुन रहे थे मानस कान। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, हरिहरन और साथी, संगीतकार सतीश भाटिया। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। आइए सुनते हैं देश गान।

0: देशगान अभी आपने सुना। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है एफएम शिमला। लीजिए पेश है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हमीरपुर जिले के नेरी में देश का पहला स्वदेशी बायोचार संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार व आजीविका के अवसर सृजित होंगे। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिमला स्थित लोकभवन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लाभार्थियों को कृत्रिम अंग प्रदान किए। उन्होंने गैर सरकारी संगठन एक्ट ह्यूमैन द्वारा राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित कृत्रिम अंग वितरण शिविर का उद्घाटन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने कल ऊना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के समापन अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि किन्नौर जिले के कल्पा में जल्द ही मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कल्पा पंचायत में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। जगत सिंह नेगी ने कहा कि मिनी सचिवालय बनने से लोगों को एक ही स्थान पर प्रशासनिक व राजस्व कार्य निपटाने में सुविधा होगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुल्लू में प्रसव के दौरान दम तोड़ने वाली महिला के परिजनों व धरने पर बैठे विभिन्न संगठनों के लोगों से कल मुलाकात की। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला की मृत्यु होना चिंताजनक है और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: ...103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 7 बजने को हैं। हिंदी में समाचार के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य

0: के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 7:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं चिंतन।
3: महाभारत के युद्ध का 18 दिनों का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की वो सच्चाई जिसने दुर्योधन की आत्मा तक को चीर दिया था, वीराने में अपनी टूटी जंघाओं के साथ पड़ा था कुरुवंश का अभिमानी युवराज दुर्योधन। शरीर पराजित था पर अहंकार अब भी जीवित था। सांसें डगमगा रही थीं, लेकिन आंखों में क्रोध और मन में एक ही आरोप था, छल छल छल छल छल छल। तभी वहां श्री कृष्ण पहुंचे। दुर्योधन ने उन्हें देखते ही अपनी पीड़ा जाहिर नहीं की, बल्कि विष उगला। बोला, कृष्ण, ये विजय धर्म की नहीं छल की है। यदि युद्ध निष्पक्ष होता तो पांडव कभी विजयी ना होते। अब कृष्ण तो कृष्ण ठहरे। उनके मुख पर मुस्कान थी, पर वो मुस्कान कटाक्ष की नहीं सत्य की थी।

उन्होंने शांत स्वर में कहा, दुर्योधन, तुम पराजय का कारण दूसरों में खोज रहे हो, पर अपनी सबसे बड़ी भूल को देखने का साहस नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें भीम ने नहीं हराया, तुम्हें तुम्हारे एक निर्णय ने हराया है, वो निर्णय जो इतिहास को मोड़ सकता था। श्री कृष्ण के शब्द अब वज्र बन चुके थे। तुम्हारी सेना में एक ऐसा योद्धा था जो स्वयं विनाश का अवतार था। यदि समय रहते तुमने उसे नेतृत्व सौंपा होता तो ये युद्ध 18 दिन नहीं, एक प्रहर भी न चलता। लेकिन तुमने उस रत्न को ठुकराकर कंकड़ को चुना। दुर्योधन का शरीर कांप उठा। श्री कृष्ण बोले, वो योद्धा था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, मित्रता और भावुकता ने दुर्योधन की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। कर्ण पर विश्वास था, पर अश्वत्थामा पर दृष्टि नहीं थी। पहले 10 दिन भीष्म सेनापति रहे। भीष्म पांडवों से स्नेह रखते थे, वे उनका वध नहीं चाहते थे। फिर द्रोणाचार्य आए। आचार्य द्रोण भी शिष्य मोह में बंधे थे। 15वें दिन द्रोण के पतन के बाद वो क्षण था जब अश्वत्थामा को आगे आना चाहिए था। पिता की मृत्यु ने उसे रुद्र बना दिया था, पर दुर्योधन ने उस क्षण को भी गंवा दिया। उसने कर्ण को चुना, वीर दानवीर पर मरणशील, जबकि अश्वत्थामा वो शक्ति जिसे पहचानने में अब बहुत देर हो गई थी। श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा में शिव का कोप समाया था। जहां कृपाचार्य 60,000 योद्धाओं से लड़ सकते थे, वहीं अश्वत्थामा अकेले 72,000 महारथियों के लिए पर्याप्त थे। द्रोण, परशुराम, व्यास, दुर्वासा, सभी का ज्ञान उसमें समाहित था। वो अस्त्र जिसका अर्जुन के पास भी उत्तर नहीं था, अश्वत्थामा के पास था। कृष्ण का अंतिम वाक्य दुर्योधन की आत्मा पर पड़ा। यदि 16वें दिन सेनापति अश्वत्थामा होता तो पांडव क्या, तीनों लोक भी उसे रोक नहीं पाते। दुर्योधन को ये बात बहुत देर से समझ आई। उसी रात मृत्यु से जूझते दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति घोषित किया, और फिर एक ही रात में वो हो गया जो 11 अक्षौहिणी सेना 18 दिनों में ना कर सकी। धृष्टद्युम्न का वध, शिखंडी और उपपांडवों का संहार, पूरा शिविर रक्त से भर गया था। सुबह जब ये समाचार दुर्योधन तक पहुंचा तो उसकी आंखें नम हो गई, आंसू बह निकले। ये आंसू विजय के नहीं थे, पछतावे के थे। उसके मन में केवल एक ही चित्कार था, जिस शक्ति को अंत में पहचाना, यदि पहले पहचान लिया होता तो आज इतिहास मेरा नाम लेता। यही महाभारत का मौन संदेश भी है। केवल संसाधन होना पर्याप्त नहीं होता, सही समय पर सही व्यक्ति को पहचानना, यही सच्चा नेतृत्व है। अक्सर हम भी भावनाओं, पूर्वाग्रहों और संबंधों में उलझकर अपने सबसे योग्य योद्धाओं को अनदेखा कर देते हैं, और जब सच्चाई सामने आती है तब समय हाथ से निकल चुका होता है।

7:10 हुए हैं तो चलिए अब आपको बता दें कि आज आप FM शिमला पर अब से लेकर रात 11:10 तक कौन कौन से कार्यक्रम और किस समय पर सुनेंगे। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। FM न्यूज हेडलाइंस आप सुनते हैं 7:57, 8:30 और 9:57 पर। प्रादेशिक समाचार आप रोजाना सुनते हैं सुबह 9:20, 11:00, दोपहर 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे सुबह 8:00, दोपहर

12 बजे, 1 बजे, 2:15, रात 8:45 और रात 11 बजे। अंग्रेजी में समाचार सुबह 8:15, दोपहर 12:05, 1:05, शाम 7:05, रात 9 बजे और रात 11:05 पर। लोक संगीत का आनंद आप लेंगे सुबह 8:32, 11:30, दोपहर 2:30 पर शिखरों के स्वर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 8:45, 12:10, रात 8:30, दोपहर 3:10 पर ओल्ड हिट्स फिल्म म्यूजिक।

9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुदरत के रंग, गीत गाता चल। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 10 बजे। पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम पेश किया जाएगा 11:05 पर। महिला सम्मेलन कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:20 पर। 1:10 पर आप सुनेंगे म्यूजिक मस्ती। सबरंग कार्यक्रम पेश किया जाएगा 2 बजे।

युववाणी कार्यक्रम आप सुनेगा 3:30 पर। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 4:20 पर आप सुनेंगे स्पीति कार्यक्रम। महास्वी कार्यक्रम पेश किया जाएगा 4:50 पर। किन्नौरी कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:20 पर। छह बजकर 5 पर आप सुनिएगा बिलासपुरी कार्यक्रम। कुलवी कार्यक्रम पेश किया जाएगा 6:35 पर। हर रोज की तरह आज भी शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे रात 8 बजे। एक फिल्म से कार्यक्रम पेश होगा रात 9:15 पर। ईमेल बेस्ड कार्यक्रम दिल की आवाज भी सुनना ना भूलें रात 9:30 पर। गजलों का आनंद आप लेंगे रात 10 बजे और सदाबहार नगमे आप सुन सकते हैं 10:30 पर। इन तमाम कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप सुनते रहिए FM शिमला 103.7 MHz पर।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। समय मिला लीजिए 7:15 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला का। सभी सुनने वालों को आपकी रेडियो हमसफर रीना वर्मा का नमस्कार। पहाड़ों की ताजी हवा, देवदार के पेड़ों की खुशबू और उगते सूरज की सुनहरी किरणों के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीवन में सफलता केवल बड़ी उपलब्धियों से नहीं बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों से भी मिलती है। किसी की मदद करना, मधुर व्यवहार रखना और सकारात्मक सोच हमारे दिन को बेहतर बना सकती है।

एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। तो चलिए हम आपको बता दें कि प्रदेश के 7 जिलों में मॉनसून ने कल से दस्तक दे दी है। इनमें किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिला शामिल हैं। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले दो दिनों में प्रदेश में के सभी जिलों में मॉनसून के पूरी तरह से सक्रिय होने की संभावना जताई है।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: FM शिमला 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। बरसात का मौसम अपने साथ सिर्फ ठंडक और हरियाली ही नहीं लाता बल्कि जीवन के कई खूबसूरत संदेश भी लेकर आता है। पहाड़ों पर छाई धुंध, बादलों की आवाजाही और बारिश की बूंदों की मधुर धुन मन को एक अलग ही सुकून देती है। बारिश हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी ठहरना भी जरूरी है। हर बूंद हमें ये एहसास कराती है कि कठिन समय हमेशा नहीं रहता। बादलों के पीछे छिपा सूरज फिर से निकलता है और नई रोशनी बिखेर देता है। इसलिए समय चाहे जैसा भी हो, उम्मीद और विश्वास का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग शिमला, जहां हर सुबह होती है नई उम्मीदों और नए उत्साह के साथ। सुनते रहिए।

0: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों में अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
1: थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है। आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
0: शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियमों शर्तें लागू।

ये सारी चीज़ें रिश्तों को मजबूत बनाने में काफ़ी सहायक होती हैं। देखिए, रिश्ते किसी बड़े अवसर या खास दिन के मोहताज नहीं होते हैं, उन्हें तो बस समय, सम्मान और अपनापन चाहिए होता है। जिस तरह पौधों को हरा भरा रखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है ना, उसी तरह रिश्तों को बनाए रखने के लिए प्यार और विश्वास की ज़रूरत होती है। इसलिए अपने जीवन में रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि यही वे अनमोल धरोहर हैं जो हर खुशी हर मुश्किल में हमारा साथ निभाती है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग शिमला, सुनते रहिए।

एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। जीवन में सफलता, धन और उपलब्धियां अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन रिश्तों की गर्माहट और अपनों का साथ ही जीवन को वास्तव में खुशहाल बनाता है। अक्सर हम व्यस्त होने की वजह से उन लोगों के लिए समय निकालना भूल जाते हैं जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। एक दूसरे का हालचाल पूछना, कुछ पल साथ बिताना, हर छोटी छोटी खुशियों में साथ रहना,

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाए, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। आज की भागम भाग वाली लाइफ में हर किसी को जल्दी है, लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि हर अच्छी चीज को समय लगता है। देखिए, कोई बीज जब हम लगाते हैं ना, तो उसे बड़ा होने में समय लगता है, नदी को अपना रास्ता बनाने में समय लगता है, और सूरज को भी हर सुबह धीरे धीरे आकाश में फैलने में समय लगता है। इसी तरह हमारे सपनों और मेहनत को भी फल देने के लिए धैर्य की ज़रूरत होती है। लेकिन धैर्य का मतलब ये भी नहीं है कि हम रुक जाएं, लेकिन लगातार कोशिश करते रहें। हर मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, बस उसके लिए धैर्य और लगातार प्रयास की ज़रूरत होती है।

0: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या होगा?
0: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
1: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
1: अच्छा,
0: केवल अधिकृत

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। आज है 1 जुलाई सन 2026। भारत और विश्व इतिहास में आज के इस दिन का अपना ही एक खास महत्व है। वैसे तो देखिए हर दिन ही अपने आप में खास होता है, लेकिन हम बात करेंगे आज के इतिहास की।

1 जुलाई को महान चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और देश की कर प्रणाली में बड़ा बदलाव लाने वाला जीएसटी दिवस मनाया जाता है। सन 1955 में भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक SBI रखा गया था। 1997 की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन ने अपनी संप्रभुता हांगकांग को सौंप दी थी और हांगकांग चीनी शासन के अधीन आ गया था। सन 2017 में भारत में अब तक के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार वस्तु एवं सेवा कर GST को पूरे देश में लागू किया गया था।

0: गुड मॉर्निंग शिमला में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। नौ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुदरत के रंग। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10 बजे। FM शिमला पर लीजिए पेश है FM न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हमीरपुर जिले के नेरी में देश का पहला स्वदेशी बायोचार संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार व आजीविका

0: अमेरिका के अवसर सृजित होंगे। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पारिश्रमिक दरें बढ़ा दी गई हैं। शिमला के चर्चित मनीषा मर्डर मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेहर पंवर ने बताया कि मनीषा मित्तल का भाई हिमांक मित्तल ही उनकी हत्या का मास्टरमाइंड निकला है और उसी ने हत्या की साजिश रची थी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ खेलों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने शिमला जिले के रोहडू में 50वीं बुशहर क्रिकेट खेलकूद प्रतियोगिता शीलघाट के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि युवाओं के चरित्र निर्माण में खेलों की अहम भूमिका है और राज्य सरकार ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा दे रही है। शिमला जिला प्रशासन द्वारा सब्जी मंडी, अनाज मंडी, लक्कड़ मंडी और ट्रांसपोर्ट गतिविधियों को शिमला शहर से बाहर स्थानांतरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने शिमला में एक बैठक में बताया कि इसके लिए महली के समीप लगभग 300 बीघा भूमि का चयन किया गया है और अधिकारियों को एक टीम ने इस भूमि का निरीक्षण किया है। प्रदेश के 7 जिलों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। इनमें किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिला शामिल हैं। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2-3 दिनों में प्रदेश के सभी जिलों में मॉनसून के पूरी तरह से सक्रिय होने की संभावना है। एफएम न्यूज हेडलाइंस के संक में इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला।
1: 8 बजने को है समाचार के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार,

0: दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपये, गोवा में 406 रूपये और केरल में 401 रूपये प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $27 अरब से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में

0: आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
2: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
3: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
2: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: ebc.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Vikasit Bharat Ji Ramji scheme comes into force across the country today, replacing existing MG Narega. Prime Minister Narendra Modi speaks to Iranian President, stressed need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football. And India's men's cricket team to begin their 5-match 2020 international series against hosts England today. Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Vikasit Bharat Ji Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from today. The Rural Development Ministry said that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country.
3: The VBG Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. This enhanced employment guarantee is intended to support the accelerated pace of rural development, provide greater income security, and empower rural households. The Act places strong emphasis on timely, transparent, and accountable wage payments. The new Act also provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time. The Viksit Bharat Ji Ramji Act is a comprehensive legislative framework designed to align rural employment generation with the national vision of Viksit Bharat by 2047. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: The central government has no

0: in the round of 16 on Sunday night. India's men's cricket team will begin their five-match 2020 international series against hosts England today. The opening match will be played at the Riverside Ground in Chesley Street, starting at 10 p.m. Indian time. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Sunil. In their first conversation after Iran-US MOU, Iran's President Pezeshkian briefs Prime Minister Modi on developments in West Asia and the way forward, reports the Indian Express. The Hindu quotes a Union Finance Ministry report that reveals that Gulf remittances rose in April despite West Asia crisis. The lead story in Hindustan Times is what the newspaper calls a grim forecast by India Meteorological Department, predicting that July is likely to be drier and hotter than normal across India. The special intensive revision of electoral rolls kicks off in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Maharashtra and Karnataka, reports the Asian Age. Niti Aayog has proposed a sweeping overhaul of India's tourism regulations as part of its latest report, Unlocking Growth in Tourism and Hospitality Sector, reports the Pioneer. In its editorial piece titled Safer Chats, the Tribune argues that WhatsApp's introduction of usernames is a long overdue privacy reform because it lets users communicate without exposing their phone numbers. And finally, work has begun on war footing on India's wrist petroglyph conservation park at Sindhu Ghat in Leh with the relocation of centuries-old rock carvings, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Vikasit Bharat G. Ramji scheme comes into force across the country today, replacing existing MG Narega. Prime Minister Narendra Modi speaks to Iranian President, stressed need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a three-day visit to India. France beats Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football. And India's men's cricket team to begin their five-match 2020 international series against hosts England today. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। लीजिए पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस।
3: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पारिश्रमिक दरें बढ़ा दी गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनधिकृत रूप से वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऊना जिला प्रशासन ने इसके लिए व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया SOP लागू कर दी है। ऊना के उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि यह SOP सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप लागू की गई है। केंद्र सरकार ने आज से आरंभ हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क की दरें संशोधित कर दी हैं। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार संशोधित दरों में पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 4 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल पर शुल्क अब 14 रुपये से घटकर 8 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। विमानन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 12 रुपये 50 पैसे से घटाकर 7 रुपये 50 पैसे कर दिया गया है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिमला स्थित लोकभवन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लाभार्थियों को कृत्रिम अंग प्रदान किए। उन्होंने गैर सरकारी संगठन एक्ट ह्यूमैन द्वारा राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित कृत्रिम अंग वितरण शिविर का उद्घाटन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने कल ऊना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के समापन अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि किन्नौर जिले के कल्पा में जल्द ही मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कल्पा पंचायत में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के 6 जिलों में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते अधिकतर क्षेत्रों में सुबह से ही वर्षा हो रही है।

0: मौसम विभाग के अनुसार अगले दो तीन दिनों में प्रदेश के सभी जिलों में मॉनसून के पूरी तरह से सक्रिय होने की संभावना है। एफएम न्यूज़ हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप

0: मौसम विभाग के अनुसार अगले दो तीन दिनों में प्रदेश के सभी जिलों में मॉनसून के पूरी तरह से सक्रिय होने की संभावना है। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही, नमस्कार।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। लीजिए पेश है लोक संगीत, आवाज है कृष्णलाल सहकल की।

जी हाँ, बरखा का मौसम हो और इन लोकगीतों का अगर साथ हो तो कार्यक्रम सुनने का अपना ही एक आनंद होता है। लीजिए सुनते हैं निम्मो देवी को।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का शिमला केंद्र मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर। 8:45 हुए हैं। आइए अब लुत्फ उठाते हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत बॉर्डर फिल्म के इस गीत से, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ें, जावेद अख्तर का गीत, अनु मलिक का संगीत। आइए सुनते हैं।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। लीजिए पेश है फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं फूल और कांटे फिल्म के इस गीत के साथ। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की, गीतकार हैं रानी मलिक, संगीतकार नदीम श्रवण।

एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। साहिब फिल्म में लीजिए सुनिए बप्पी लहरी और एस जानकी को। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार बप्पी लहरी।

एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, दिल तो पागल है। इस फिल्म में लीजिए सुनिए आशा भोसले को, शब्द रचना है उत्तम आनंद बख्शी की, संगीत रचना उत्तम सिंह की।

नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए समीर का लिखा गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक और कैलाश खेर की। फिल्म का नाम है बरसात।

लीजिए सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने। आवाजें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की। फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। तो चलिए अब आपको बता दें आज आकाशवाणी शिमला से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण। 9:30 पर आप सुनेंगे सुरबेला कार्यक्रम। रिमझिम कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे सुबह 10:00। लोक संगीत आप सुनेंगे 11:05, 2:30 पर हिमगुंजन, रात 8:00 धारा रे गीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग पेश किया जाएगा 11:30 पर। दोपहर 12:20 पर आप सुनेंगे महिला सम्मेलन कार्यक्रम। 1:10 पर आप सुनते हैं सैनिकों के लिए कार्यक्रम। 2:00 आप सुनेंगे सुनहरी किरणें। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 12:10, 2:45, रात 8:15 और रात 10:00।

शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम। सुगम संगीत पेश किया जाएगा 8:30 पर। गजलों पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता पेश किया जाएगा 9:15 पर।

रात 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 10:30 पर सुरबहार पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। यह आज आकाशवाणी शिमला से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी प्रसारित किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो डीटीएस सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है।
1: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के तहत संशोधित दरें आज से होगी लागू। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अनेक वर्गों के लिए कारगर हो रही साबित। चंबा जिला के राजकीय महाविद्यालय भलई को मर्ज करने पर लोगों में भारी रोष। 9 जुलाई तक फैसला वापस न लेने पर चक्का जाम कर आंदोलन की दी चेतावनी। और प्रदेश में मानसून के दस्तक देते ही कई क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये दर बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि पहली बार 300 रुपये प्रतिदिन का अंतरिम आधार पारिश्रमिक दर लागू किया गया है और सुनिश्चित किया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत कोई भी अधिसूचित दर इससे कम न हो। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपये से बढ़ाकर वीबी जीराम जी के तहत 327.40 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार मजदूरी दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15-25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की समृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि की समृद्धि में मनाया जाता है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिकित्सकों का कठिन परिश्रम और प्रतिबद्धता देश की स्वास्थ्य सेवा का आधार है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक के दौरान भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार बच्चों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है और उनके सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए राज्य में अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। ये जानकारी उन्होंने जिला ऊना बाल कल्याण कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष ओंकार कपिला से एक शिष्टाचार भेंट के दौरान दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को न्याय दिलाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और समाज में जागरूकता लाने के लिए कमेटी को निष्ठापूर्वक कार्य करने पर बल दिया। ओंकार कपिला ने भरोसा दिलाया कि वे सरकार की नीतियों के अनुसार बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य करेंगे। चंबा जिला के भलई में चल रहे राजकीय महाविद्यालय को बंद कर प्रदेश सरकार ने चंबा महाविद्यालय में मर्ज कर दिया है, जिससे इलाके के लोगों में भारी रोष है। सभी पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इसे पुनः बहाल करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की कि यदि जल्द कॉलेज को दोबारा शुरू करने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो 9 जुलाई को भलई चंबा मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर आंदोलन किया जाएगा। वहीं आगामी विधानसभा चुनावों का भी बहिष्कार किया जाएगा।
1: नमस्कार जी, मेरा नाम सतीश कुमार और मैं भलई पंचायत का निवासी हूँ। से भी बच्चे उस कॉलेज में आ रहे थे, लेकिन राजनीतिक कारणों से, प्रशासनिक कारणों से इस कॉलेज को उन्होंने मर्ज कर दिया। और सबसे बड़ा जो कारण था वो था स्टाफ की कमी। अब एक प्रोफेसर के सहारे कॉलेज नहीं चल सकता। जिस टाइम 3 प्रोफेसर थे तो स्ट्रेंथ भी 160 थी। तो भाई कारण आप लोग हो, कोई आपने वहाँ पे स्टाफ नहीं दिया। स्टाफ होता तो शायद आज उसकी वहाँ पे स्ट्रेंथ 300-400 तक होती। और अगर ये मर्ज होने वाली नोटिफिकेशन गवर्नमेंट वापस नहीं लेती है तो 9 तारीख को हम पूर्ण रूप से चक्का जाम करेंगे।
2: मेरा नाम पूजा है और मैं भलई से रहने वाली हूँ। और ये हमारा जो कॉलेज है वो मर्ज कर दिया गया है और हमें दोबारा से इस कॉलेज की जरूरत है, और खास करके लड़कियों के लिए बड़ा जरूरी है ये कॉलेज। हमारी लड़कियां दूर नहीं जा सकती, अगर जाती है तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए हमें ये कॉलेज दोबारा से वापिस चाहिए और स्टाफ के साथ।
3: मित्रा देवी है, मैं भलई पंचायत से हूँ और हमारा भलई कॉलेज बंद होने की बहुत समस्या आ रही है। हमारे गरीब घर की जितनी भी लड़कियां हैं वो बाहर नहीं पढ़ सकती क्योंकि उनसे खर्चा नहीं उठ सकता है। और प्रशासन से भी और सरकार से भी हमारी रिक्वेस्ट है, दो हाथ जोड़ के, कि हमारी सहयोग करें और हमारा कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in/DTH सेवा और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी CBSE स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की नियुक्ति पर फैसले से संबंधित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आज शिमला में आयोजित की जाएगी। ये बैठक उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में होगी। गौरतलब है कि 158 CBSE स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की नियुक्तियां करने को शिक्षा बोर्ड के माध्यम से परीक्षा ली गई थी। इस बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और नगर और ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी शामिल होंगे। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना आज प्रदेश के अनेक निराश्रित बच्चों और युवाओं के लिए सहारा बन रही है। इस योजना के अंतर्गत 0 से 27 वर्ष तक के युवाओं के लिए उनके पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा और उच्च शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
4: कुल्लू जिला किला घाटी के शालंग गांव के 24 वर्षीय सीताराम के सिर से माता पिता का साया उठ चुका था तथा सामने भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित दिखाई देता था। ऐसे समय में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना उनके लिए आशा की किरण बनकर सामने आई। सीताराम बताते हैं कि सरकार ने उनके लिए अभिभावक की भूमिका निभाई। योजना के तहत उन्हें अपना घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। इसके साथ ही स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा उन्हें राफ्टिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाया गया ताकि वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: प्रदेश के 7 जिलों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है।

राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश का दौर जारी है। इस बार मॉनसून सामान्य के मुकाबले कुछ दिन देरी से पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने मॉनसून की सक्रिय शुरुआत को देखते हुए आगामी चार दिनों तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल पहुंचा मॉनसून, कई इलाकों में बरसे बादल, आज से भारी बारिश का येलो अलर्ट। पंजाब केसरी की खबर है, आपत्ति के बावजूद हिमाचल सरकार आज से लागू करेगी VBG रामजी योजना, आउटसोर्स कंपनी पर गिरी गाज, शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, खाद्य सुरक्षा एवं विनियम निदेशालय ने लिया कड़ा फैसला। मुख्यमंत्री के हवाले से दैनिक भास्कर ने सुर्खी दी है, हमीरपुर जिले के नेरी में बन रहा देश का पहला स्वदेशी बायोचार प्लांट, प्रदेश को मिल सकते हैं 28,800 कार्बन क्रेडिट। दैनिक जागरण की एक खबर है, आउटसोर्स नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की मंजूरी अनिवार्य। मनीषा मित्तल हत्या केस पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, भाई हिमांक निकला मर्डर का मास्टर माइंड। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत संशोधित दरें आज से होगी लागू। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अनेक वर्गों के लिए कारगर हो रही साबित। चंबा जिला के राजकीय महाविद्यालय भलई को मर्ज करने पर लोगों में भारी रोष, 9 जुलाई तक फैसला वापस न लेने पर चक्का जाम कर आंदोलन की दी चेतावनी। और प्रदेश में मॉनसून के दस्तक देते ही कई क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुने। इसे एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी प्रसारित किया गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला, कुदरत के रंग कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी रेडियो हम सफर रीना वर्मा। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे शिमला जिले की सबसे ऊंची चोटी चंचल दर्रे की। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है और ये मई से अक्टूबर तक खुला रहता है। ये रोहडू के छोटे शहर को डोडरा और कवार के गांवों से जोड़ता है। चंचल दर्रा शिमला जिले की सबसे ऊंची चोटी है और ऊपर से ये आसपास की घाटी का मनमोहक दृश्य पेश करता है। चंचल की चोटी काफी सुंदर है।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

जंगलों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और कल कल बहती जलधाराओं से सजी ये घाटी प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की ताजी हवा और मनमोहक दृश्य हर आने वाले पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चांचल घाटी केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ के शांत और सुकून भरे माहौल के लिए भी जानी जाती है।

हिमाचल प्रदेश की वादियों में कई ऐसे स्थान हैं जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के कारण लोगों के दिलों में खास जगह बना लेते हैं। इन्हीं में से एक है रोहडू के समीप स्थित चांशल घाटी। हरे भरे देवदार के

चांचल दर्रा शहरों के भागदौड़ और शोर शराबे से दूर ये स्थान मन को नई ऊर्जा और ताजगी प्रदान करता है। बरसात के मौसम में घाटी का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। बादलों से ढके पहाड़, हरियाली से लदी ढलाने और ठंडी हवाएं इस जगह को और भी आकर्षक बना देती है। यदि आप प्रकृति के करीब कुछ पल बिताना चाहते हैं और हिमाचल की असली खूबसूरती को महसूस करना चाहते हैं तो चांचल घाटी जाना आपके लिए एक यादगार अनुभव साबित होगा।

चांचल दर्रे और डोडरा और क्वार के जुड़वा गांव का एक अनूठा इतिहास है। डोडरा और क्वार के गांव कुछ किलोमीटर की दूरी पर है और अब मोटर वाहन योग्य सड़क से जुड़े इस इलाके में एक प्राचीन सुंदरता बरकरार है। यहां अनगिनत जंगली फूल और औषधीय जड़ी बूटियां और देवदार और बर्च के घने जंगल, झरने और तेज बहने वाली नदियाँ हैं।

0: कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। डीजे पेश है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पारिश्रमिक दर बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार बच्चों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है तथा उनके सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए राज्य में अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। ये जानकारी उन्होंने जिला ऊना बाल कल्याण कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष ओमकार कपिला से एक शिष्टाचार भेंट के दौरान दी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी है।

0: प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना आज प्रदेश के अनेक निराश्रित बच्चों और युवाओं के लिए सहारा बन रही है। इस योजना के अंतर्गत 0 से 27 वर्ष तक के युवाओं के लिए उनके पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा और उच्च शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है। प्रदेश के सरकारी CBSE स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की नियुक्ति पर फैसले से संबंधित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आज शिमला में आयोजित की जाएगी। ये बैठक उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में होगी। गौरतलब है कि 158 CBSE स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की नियुक्तियां करने को शिक्षा बोर्ड के माध्यम से परीक्षा ली गई थी। चंबा जिला के भलेई में चल रहे राजकीय महाविद्यालय को बंद कर प्रदेश सरकार ने चंबा महाविद्यालय में मर्ज कर दिया है, जिससे इलाके के लोगों में भारी रोष है। सभी पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इसे पुनः बहाल करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा है। शिमला सहित प्रदेश के 6 जिलों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते अधिकतर क्षेत्रों में सुबह से ही वर्षा हो रही है। इस बार मॉनसून सामान्य के मुकाबले कुछ दिन देरी से पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने मॉनसून की सक्रिय शुरुआत को देखते हुए आगामी 4 दिनों तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। FM न्यूज हेडलाइंस में आज बस इतना ही। नमस्कार।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 MHz FM शिमला।
2: पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 10 बजे हैं और ये समय है कार्यक्रम गीत गाता चल का। शुरुआत करते हैं स्वर्ग से सुंदर इस फिल्म के गीत के साथ। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल। आप भी गीतों को सुनते सुनते गाते रहिए और ये सफर आगे बढ़ाते रहिए। दामिनी फिल्म का ये गीत है, आवाजें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की, शब्द रचना है समीर की, संगीत रचना नदीम श्रवण की।

दिल का क्या कसूर, इस फिल्म में अभी आपने कुमार सानू को सुना। दिल वाले फिल्म में लीजिए सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक को। बोल हैं समीर के, तर्ज दी है नदीम श्रवण ने।

0: एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल, और गीतों के साथ साथ इस समय आप शिमला में बारिश का भी आनंद ले रहे हैं, और हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप बारिश के साथ साथ गीतों को भी गाते रहें, गुनगुनाते रहें। नमक हलाल फिल्म का गीत सुनिए, जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। शब्द रचना है अनजान की, संगीत रचना बप्पी लहरी की।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: FM शिमला 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल, दिल तेरा आशिक। इस फिल्म में लीजिए सुनिए कुमार सानू के साथ अलका याग्निक को। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

0: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम का आखिरी गीत अजनबी फिल्म से है, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। बोल हैं समीर के, तर्ज दी है अनु मलिक ने।

गीत गाता चल कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अपनी रेडियो हम सफर रीना वर्मा को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये दर बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि पहली बार 300 रुपये प्रतिदिन का अंतरिम आधार पारिश्रमिक दर लागू किया गया है और सुनिश्चित किया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत कोई भी अधिसूचित दर इससे कम न हो। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपये से बढ़ाकर वीबीजी रामजी के तहत 327.40 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार मजदूरी दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मजदूरी दर में 15-25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस संशोधन को गांवों की समृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिकित्सकों का कठिन परिश्रम और प्रतिबद्धता देश की स्वास्थ्य सेवा का आधार है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक के दौरान भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मजबूत हुई है। प्रदेश के सरकारी CBSE स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की नियुक्ति पर फैसले से संबंधित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आज शिमला में आयोजित की जाएगी। ये बैठक उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में होगी। गौरतलब है कि 158 CBSE स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की नियुक्तियां करने को शिक्षा बोर्ड के माध्यम से परीक्षा ली गई थी। इस बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और नगर तथा ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी शामिल होंगे। चंबा जिला के भलेई में चल रही राजकीय महाविद्यालय को बंद कर प्रदेश सरकार ने चंबा महाविद्यालय में मर्ज कर दिया है, जिससे इलाके के लोगों में भारी रोष है। सभी पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इसे पुनः बहाल करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की कि यदि जल्द कॉलेज को दोबारा शुरू करने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो 9 जुलाई को भलेई चंबा मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर आंदोलन किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों का भी बहिष्कार किया जाएगा।
1: नमस्कार जी, मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं भलेई पंचायत का निवासी हूँ। वो जो भलेई कॉलेज के जो मर्ज नोटिफिकेशन आई है, हम चाहते हैं कि वो मर्ज ना हो और वो अपने पुराने रूप में ही भलेई में ही चलता रहे। ऐसा नहीं थी कि वहाँ एडमिशन नहीं हो रही थी और बहुत सारे बच्चे वहाँ से पास आउट होके गए हैं, जहाँ जिसमें मैक्सिमम लड़कियां थी। ऐसे बच्चे थे जो बाहर जाके नहीं पढ़ सकते थे या बाहर वो इतना खर्चा नहीं उठा सकते थे। हमारी जो हडला पंचायत लगती है पीछे, कंगेड़, नडल, जुतरन, वहां से भी बच्चे उस कॉलेज में आ रहे थे, लेकिन राजनीतिक कारणों से, प्रशासनिक कारणों से इस कॉलेज को उन्होंने मर्ज कर दिया। और सबसे बड़ा जो कारण था वो था स्टाफ की कमी। अब एक प्रोफेसर के सहारे कॉलेज नहीं चल सकता। जिस टाइम 3 प्रोफेसर थे तो स्ट्रेंथ भी 160 थी। तो भाई कारण आप लोग हो, तो आपने वहां पे

0: स्टाफ नहीं दिया, स्टाफ होता तो शायद आज उसकी वहां पे स्ट्रेंथ 300-400 तक होती। और अगर ये मर्ज होने वाली नोटिफिकेशन गवर्नमेंट वापस नहीं लेती है तो 9 तारीख को हम पूर्ण रूप से चक्का जाम करेंगे।
1: नगर निगम धर्मशाला के महापौर एवं उपमहापौर पद के निर्वाचन के लिए आज पुनः बैठक आयोजित की जाएगी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 29 जून को आयोजित बैठक में नगर निगम धर्मशाला के नव निर्वाचित पार्षदों के शपथ दिलाई गई थी, लेकिन महापौर एवं उपमहापौर का चुनाव आवश्यक कोरम पुराना होने के कारण सम्पन्न नहीं हो सका था। प्रदेश के 7 जिलों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश का दौर जारी है। इस बार मॉनसून सामान्य के मुकाबले कुछ दिन देरी से पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने मॉनसून की सक्रिय शुरुआत को देखते हुए आगामी 4 दिनों तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के अलावा FM शिमला पर भी प्रसारित किए गए। यह आकाशवाणी शिमला है, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
3: जिंदगी का हर मौसम कुछ ना कुछ सिखा जाता है और प्यार हर दिल को जीना सिखा जाता है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ आपका स्वागत करते हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला पर। समय है पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम का और कुछ चुनिंदा गीतों के साथ बारिश में प्यार को महसूस करेंगे आज के कार्यक्रम में। आज के सफ़र की हम सफ़र, मैं रुचि ठाकुर।

पुरानी फिल्मों में बारिश प्यार के इजहार का जरिया होता था। बारिश वाले गानों में मासूमियत, सादगी और गहरी भावनाएं दिखाई देती थी। तो आइए आगाज करते हैं श्री 420 फिल्म के इस गीत के साथ। इसे गाया है मन्ना डे और लता मंगेशकर ने, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं बारिश और प्यार की। हीरो हीरोइन का एक छाता, भीगती सड़कें, धीमा संगीत कहानी को यादगार बना देते थे। पुरानी फिल्मों में प्यार और बारिश दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा है कि जब भी बादल बरसते हैं दिलों की धड़कने भी गुनगुनाने लगती हैं। आज भी अगर हम ये गीत सुनते हैं तो वही एहसास लौट आता है उन दिनों का। जी हाँ, अब आपको सुनवाएंगे चलती का नाम गाड़ी फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में, मजरूह के बोल और एस डी वर्मन का संगीत।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से ये कार्यक्रम। इन फिल्मों में बारिश सिर्फ आसमान से गिरती बूंद नहीं होती थी, बल्कि दो दिलों के जोड़ने वाली एक सबसे खूबसूरत भाषा थी। जी हाँ, आइए अब आपको सुनवाते हैं काला बाजार फिल्म से ये गीत, गीता दत्त और साथियों की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल और RST वर्मन का संगीत।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से ये कार्यक्रम। बारिश यानी ठंडी ठंडी फुहारें, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और दिल को छू लेने वाले पुराने गीत अगर साथ हों तो बात ही कुछ और है। पुरानी फिल्मों में बारिश केवल मौसम नहीं बल्कि प्यार, मिलन, बिछड़ने और उम्मीद की कहानी भी कहती थी। आइए अब सुनते हैं ये गीत फिल्म बारिश से।

बारिश फिल्म के इस गीत के साथ आज पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम में बस इतना ही। जब भी बारिश होती है पर्दे पर ऐसे गीत आते थे जो आज भी लोगों की यादों में बसे हैं। कभी छाते के नीचे दो दिल करीब आते थे तो कभी बारिश की बूंदें किसी की यादों को ताज़ा कर देती थी। जी हाँ, आज पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम ने हमने बात की बारिश और प्रेम की। अपना ख्याल रखिए, बारिश का आनंद लीजिए, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। यूं ही बने रहिए आकाशवाणी FM शिमला के साथ।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप सुन रहेंगे अब पहाड़ी संगीत कार्यक्रम। जी हाँ, हिमाचली लोकगीतों पर आधारित है ये कार्यक्रम। आइए आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में, जहाँ हर पर्व, हर ऋतु और हर खुशी पर लोकगीत की मधुर धुनों से जो है वो उनकी लहरियाँ जो है वो गूंज उठती हैं। तो आगाज करेंगे भुवनेश्वरी ठाकुर के गाए इस लोकगीत के साथ कार्यक्रम का।

आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत कार्यक्रम। हिमाचली लोकगीत हमारी संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन की अमूल्य धरोहर है। इन गीतों में पहाड़ों की सुंदरता, प्रकृति का प्रेम, रिश्तों की मिठास और लोगों के सरल जीवन की झलक मिलती है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कुमार सोनी का गाया ये लोकगीत।

0: आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: पहाड़ी संगीत कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ। चाहे कोई भी अवसर हो, फसल कटाई की खुशी हो, हर मौके पर लोकगीत पूरे उत्साह के साथ गाए जाते हैं। ढोल, नगाड़ा, करनाल और शहनाई जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र इन गीतों की शोभा बढ़ाते हैं। तो आइए अब हम सुनेंगे सरिता चौहान का गाया ये लोकगीत।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाएंगे रमेश कुमार का गाया ये लोकगीत।

बिमला चौहान और साथियों का गाया ये लोकगीत अभी आपने सुना कार्यक्रम पहाड़ी संगीत में। इसी के साथ आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। 12 बजने को हैं, अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी व अंग्रेजी समाचार के लिए। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: ההקלטה. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल धीरज सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

0: इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 428 अंक की बढ़त के साथ 76,906 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 137 अंक चढ़कर 24,003 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay.

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 12:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। जुबेदा फिल्म के इस गीत के साथ आगाज करेंगे फिल्म संगीत का। इसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह ने।

0: आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: पुकार फिल्म का ये गीत अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत में। इसे गाया है उदित नारायण और हेमा सरदेसाई ने।

इस गीत के साथ आज फिल्म संगीत में बस इतना ही। 12:20 होने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 387.6 मीटर पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा दैनिक आयोजन महिला सम्मेलन। श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे FM चैनल पर भी सुन सकते हैं।

0: कार्यक्रम महिला सम्मेलन सुनने वाली सभी बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लीजिए बहनों, एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन लेकर। और आज के इस सफर में हम रहेंगे आपके साथ कल्पना ठाकुर
1: और मैं सपना शर्मा। आप सभी को हमारा
0: नमस्कार।
1: देखिए कल्पना, कहा जाता है कि जीवन ईश्वर का सबसे अनमोल उपहार है और उस उपहार की रक्षा का दायित्व जिन हाथों में होता है उन्हें हम चिकित्सक कहते हैं।
0: जी बिल्कुल। और देखिए, बीमारी के कठिन क्षणों में जब उम्मीद की किरण धुंधली पड़ने लगती है ना, तब एक डॉक्टर का आत्मविश्वास, उनका ज्ञान और उनकी संवेदनशीलता हमें फिर से जीवन की ओर लौटने का हौसला देती है।
1: बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर सिर्फ रोगों का इलाज नहीं करते बहनों, बल्कि विश्वास, साहस और नई उम्मीद भी हमें देते हैं।
0: बिल्कुल। और इन्हीं समर्पित चिकित्सकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है।
1: जी हाँ, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है।
0: जी हाँ बहनों, इनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और इनका निधन 1 जुलाई 1962 को हुआ था।
1: जी हाँ। और देखिए कल्पना, उनका जीवन इस बात का प्रेरणादायक उदाहरण है कि चिकित्सा सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि सेवा और मानवता का सर्वोच्च रूप है।
0: जी, चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1961 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था।
1: बिल्कुल। और एक डॉक्टर अपने ज्ञान, अनुभव और संवेदनशीलता से न सिर्फ मरीज का इलाज करता है बल्कि उनके परिवार को भी आश्वस्त करता है कि सब ठीक हो जाएगा।
0: जी, और यही विश्वास किसी उपचार की सबसे बड़ी ताकत होती है।
1: हाँ।
0: और बहनों देखिए, कोरोना काल की अगर हम बात करें तो उस कठिन दौर में डॉक्टर का समर्पण हम सभी ने देखा है।
1: बिल्कुल देखा है।
0: दिन रात अस्पतालों में रहकर अपनी सुरक्षा से पहले दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देकर उन्होंने मानवता की जो मिसाल पेश की है ना
1: जी,
0: वो हमेशा याद रखी जाएगी।
1: बिल्कुल। लेकिन अगर एक स्वस्थ समाज की हम बात करें ना, तो स्वस्थ समाज बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर की नहीं है बल्कि हम सभी की है।
0: बिल्कुल सपना। और देखिए, समय पर स्वास्थ्य जाँच करवाना, संतुलित आहार लेना, नियमित योग और व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना, साथ ही साथ पर्याप्त नींद लेना और डॉक्टर की सलाह का पालन करना, ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं और इनको अपनी आदतें अगर हम बनाएंगे तो हमें स्वस्थ जीवन की ओर ये जरूर ले जाएगी।
1: जी बिल्कुल। तो चलिए, इस राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर हम अपने जीवन में जुड़े हर चिकित्सक के प्रति

0: कृतज्ञता व्यक्त करें और ये संकल्प लें कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर बीमारी से बचाव को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सही कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है।
1: जी बिल्कुल बहनों। तो बहनों ये तो बात हुई आज के खास दिन की, अब आपको सुनवाते हैं ये गीत।
0: जी

0: यदि आप उम्मीद का दामन थामे हैं तो हौसला ज़रूर रखें, क्योंकि नाकामियां जब चरम पर होती है ना तो सफलता बेहद पास होती है।
1: बिल्कुल, तो आप भी सफलता पाने के लिए बहनों मेहनत करते रहिए, फिर देखिएगा एक ना एक दिन मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी।
0: जी, और अक्सर हमारी बहनों ने और हमने भी देखा होगा सपना, आपने भी ये महसूस किया होगा और सुना भी होगा कि सुख और दुख जो है ना वो एक ही सिक्के के दो पहलू है।
1: बिल्कुल,
0: जीवन में दोनों का ही अपना अपना महत्व है।
1: हाँ कल्पना, और अगर दुख है तभी तो देखिए ना सुख का वजूद भी है।
0: जी,
1: लेकिन बहनों हमें ये समझना होगा कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो देखिए बुरा वक्त भी कभी ना कभी चला ही जाएगा।
0: जी, और बस हमें उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना है बहनों।
1: जी,
0: खुद पर विश्वास रखना है और सही समय पर सही निर्णय लेकर अपनी मुश्किलों को आसान बनाना है।
1: जी हाँ, देखिए बहनों जीवन में छोटी छोटी परेशानियों में उलझकर हमें देखिए अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है।
0: जी,
1: इसमें कोई समझदारी नहीं है। इन बातों का रोना रोने की बजाय हमें अपने बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और आगे बढ़ना होगा।
0: तो इसके लिए बहनों हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहले तो अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या आ जाए तो हमें उस समय ये खुद से पूछना होगा, अंतर्मन से पूछना होगा कि क्या इस समस्या का हल मैं अभी निकाल सकता या सकती हूँ। अगर हाँ तो तुरंत उसके लिए एक्शन ले और उसको सुलझाने की कोशिश करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं उस समस्या का समाधान निकालना अभी आपके बस में नहीं है तो व्यर्थ में चिंता मत करिए, क्योंकि अगर आप चिंतित रहेंगे उस समस्या के प्रति तो आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक तौर पर वो बिगड़ सकता है। तो आप उस समस्या को उसी तरह से स्वीकार करें। और देखिए बहनों, कभी कभी कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसी बातें होती है जिनके समाधान वक्त पर रख दिए जाते हैं जो मनुष्य के हाथ से परे होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा कल्पना आपने। जब भी आपको किसी छोटी बात पर बहनों गुस्सा हो या झुंझुनाहट हो तो उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चल रही हैं। इसके साथ साथ सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देने से नकारात्मक बातें जो है ना बहनों वो छोटी लगने लगती है। इसलिए जितना हो सके सकारात्मक सोचें और नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से हटा दें।
0: जी, और याद रखिए कि आपको अपने जीवन के जो अनमोल पल है ना वो एक छोटी सी बात की वजह से नहीं गंवाने हैं।
1: जी,
0: उन पलों को खुलकर जियो जिससे आपके मन को सच्ची खुशी मिलती हो। अगर आप ऐसे खुशी के मौकों पर भी अपनी नाकामियों, अपने बुरे वक्त को याद करती रहेंगी ना तो उस खुशी का मज़ा भी आप गंवा देगी।
1: बिल्कुल सही कहा कल्पना आपने। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो दिमाग में है ना कुछ ऐसी परेशानियां चल रही होती है कि उस समय जो वक्त है ना, जैसे आपने कहा कि खुशी का अगर मौका है तो उस खुशी के मौके में भी ना हमारे दिमाग में वही चिंता वही तनाव रहता है, जिस वजह से क्या होता है कि हम परेशान भी रहते हैं और वो जो खुशी के अच्छे पल है ना उसे भी हम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं।
0: जी, और किसी ने क्या खूब कहा है सपना कि छोड़ी शिकायत शुक्रिया अदा कीजिए।
1: जी,
0: छोड़िए शिकायत शुक्रिया अदा कीजिए, जो अभी पास है, जो पल आपके पास है खुशी के पल, उनका मज़ा लीजिए, उनका आनंद लीजिए, और जो परेशानियां हैं दिक्कतें हैं उनको थोड़े समय के लिए दरकिनार कर दीजिए।
1: बिल्कुल, बहुत खूब किसी ने कहा है, तो आपको भी ऐसा ही करना है बहनों, अपने हर पल को इंजॉय करना है अपनी परेशानियों को थोड़ा सा दूर रख कर।
0: जी, और बहनों कभी कभी लोग या जो परिस्थितियाँ होती हैं ना वो हमारे हिसाब से नहीं होती।
1: जी,
0: लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि दुनिया आपके खिलाफ हो गई है।
1: बिल्कुल,
0: इसे एक प्रकृति का नियम समझे और अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारे जीवन में ना बहनों कई तरह के लोगों से सामना होता है।
1: जी,
0: और कई तरह की ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती है जिससे बाहर निकल पाना हमें थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन याद रखिए बहनों, मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन उसको पार आप ज़रूर कर सकती है दृढ़ इच्छा शक्ति से और अपने अंतर मन में आत्मविश्वास जगाकर।
1: बिल्कुल, तो अपने मन में आत्मविश्वास को आप बनाए रखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। और देखिए ना कल्पना, ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए देखिए सबसे ज़रूरी होता है हमारा लक्ष्य, है ना? और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें लगातार मेहनत भी करते रहना है। इसके लिए हमें अपनी रुचि को जानना जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाता है।

0: और खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है बहनों, हमें रोज़ नई नई चीज़ें सीखनी है
1: जी। और रही बात जैसा कि आपने कहा लक्ष्य की, तो सही लक्ष्य चुनना बहुत ज़रूरी है सपना
0: जी।
1: अगर आप एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं जिसके लिए आपका जो क्राइटेरिया है वो मैच नहीं कर पा रहा है और आप उस लक्ष्य के पीछे जो है मेहनत कर रहे हैं और बाद में अगर असफल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि बस हम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता
0: जी।
1: लेकिन अगर आप सही दिशा में सही लक्ष्य चुनेंगे, सही दिशा में प्रयास करेंगे, तो ज़रूर आपको एक न एक दिन सफलता मिलेगी ही मिलेगी।
0: बिल्कुल मिलेगी। अब देखिए ना, ये जानना होगा कि असल में हम बनना क्या चाहते हैं
1: जी।
0: उसे मछली की आंख की तरह अपना लक्ष्य बनाओ और पूरा ध्यान आपको क्या करना है, उस आंख पर केंद्रित करना है, यानी नई चीज़ों को सीखने की आप आदत डालें और कुछ ना कुछ करते रहें
1: जी, और अपने उस लक्ष्य को बिल्कुल एक मछली की आंख की तरह निर्धारित करके रखिए। और बहनों, अपने लक्ष्य के प्रति हम भले ही छोटा कदम उठाएं लेकिन उसे रोज़ करें, आलस से बचने की कोशिश करें और सबसे ज़रूरी समय प्रबंधन सीखें, क्योंकि अगर सही समय पर लिया गया सही निर्णय जो है वो आपको सफलता की ओर ज़रूर ले जाएगा।
0: बिल्कुल, आलस की बात कल्पना आपने की ना, तो देखिए बहुत ही ज़रूरी बात ये हम सभी को समझनी होगी कि आलस को हमें अपनी ज़िंदगी से दूर भगाना है ना।

0: आपको सफलता की ओर जरूर ले जाएगा।
1: बिल्कुल, आलस की बात कल्पना आपने की ना, तो देखिए बहुत ही जरूरी बात ये हम सभी को समझनी होगी कि आलस को हमें अपनी जिंदगी से दूर भगाना है, है ना। कई बार होता है क्या, अक्सर होता है कि हम आज के काम को कल पर टाल देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। अब जैसे कहा भी गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब।
0: जी,
1: तो आपको जो कल काम करना है उसे आज ही आप निपटा लीजिए।
0: जी, और सबसे ज़रूरी बात कि खुद को एक्सेप्ट कीजिए कि आपके अंदर भी कोई ना कोई कमी है। और ये आप जानती ही है बहनों कि हर इंसान जो है ना वो गलतियों का पुतला है।
1: जी,
0: हर किसी से कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, लेकिन इंसान समझदार वही है बहनों जो अपनी गलतियों से सीख ले।
1: जी बिल्कुल,
0: याद रखिए हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी तो असफल हुआ होता है, लेकिन असली जीत तब होती है जब आप हार नहीं मानते।
1: बिल्कुल, और अपनी हार से कुछ ना कुछ सीखते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं।
0: जी,
1: तो कल्पना आप अपनी बातों को थोड़ा सा विराम देते हैं और अपनी बहनों को लिए चलते हैं संगीत की ओर।
0: जी बिल्कुल।

0: देखिए कल्पना, जब मौसम बदलता है तो नज़ारे भी बदल जाते हैं
1: जी,
0: हवाओं का रुख भी बदलता है और प्रकृति का रंग भी बदलता है
1: जी। और इन्हीं बदलावों के साथ साथ हमारे शरीर की ज़रूरतें भी बदलने लगती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए बदलते मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या और खान पान में थोड़ा सा बदलाव करना बेहद ज़रूरी होता है बहनों।
0: बिल्कुल सही कहा कल्पना आपने। तो क्यों ना आज स्वास्थ्य चर्चा में हम अपनी बहनों सीसी विषय पर बात करें कि बदलते मौसम में ना आप अपना ख्याल कैसे रखें और कौन कौन सी सावधानियां आप बरतें ताकि आप स्वस्थ भी रह सकें और साथ ही साथ इस मौसम का आनंद भी ले सकें।
1: जी, मानसून ने दस्तक दे दी है बहनों, और मौसम में नमी और अचानक बदलते तापमान के कारण बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण जैसे कि सर्दी, जुकाम, पाचन संबंधी और त्वचा से संबंधित कई तरह की समस्याएं तेजी से बढ़ने लगती है।
0: बिल्कुल, तो इन परेशानियों से बचने के लिए आपको बहनों हम कुछ आसान लेकिन असरदार उपाय बताएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सुनते रहना है अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन, क्योंकि यहाँ जानकारी के साथ साथ मनोरंजन का सिलसिला भी जारी रहता है। तो चलिए कल्पना, आप अपनी बहनों को बताते हैं मानसून के मौसम में वो किस तरह अपना ख्याल रखें।
1: जी, तो सबसे पहले हमें अपने जो खाने पीने की वस्तुएं हैं कि आखिर हमें इस मौसम के दौरान क्या खाना है और पीने में क्या जो है इस्तेमाल करना है उसके बारे में बता देते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: तो संतुलित और हल्का भोजन हमें जो है बहनों इस मौसम के दौरान करना चाहिए ताकि आपको आसानी से जो वो पच सके, और बाहर का जो तला भुना खाना होता है ना या फिर बासी खाना होता है उसको खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा ताज़े फल, हरी सब्जियां और ज्वार का बना भोजन ही जो है, यानी कि घर में जो खाना बनाया जाता है वही भोजन आपको खाना चाहिए, वो आपके लिए सबसे बेहतर होता है।
0: बिल्कुल, इसके साथ साथ आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। देखिए उमस के कारण क्या होता है ना बहनों, शरीर से पसीना ज़्यादा निकलता है
1: जी।
0: ऐसे में पर्याप्त पानी, नींबू पानी, छाछ या नारियल पानी आपको पीते रहना है ताकि आपका जो शरीर है ना वो हाइड्रेट बना रहे।
1: जी बिल्कुल, और जब आपका शरीर हाइड्रेट रहता है तो वो कई तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए भी आपको मजबूत बनाता है
0: जी।
1: और देखिए ये मानसून जो है शुरू हो गया है तो ऐसे में हर तरफ जो है हमें गंदगी सी दिखाई देने लगती है क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा रहता है
0: जी।
1: तो ऐसे में साफ सफाई का ख्याल जो है विशेष तौर पर हमें रखना चाहिए। खाने से पहले जो है हमें हाथ धोने चाहिए, और अगर आप बाहर से भी आ रहे हैं तब भी अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं क्योंकि हाथों में कई तरह के बैक्टीरिया जो है वो चिपके रहते हैं। अगर आप हाथ नहीं धोएंगे तो वो बैक्टीरिया सीधे आपके मुँह के द्वारा आपके पेट में चले जाएंगे जो आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा कल्पना आपने, और इसके साथ साथ हमें एक और बात का खास ख्याल रखना है, अपने घर के आसपास या छत पर पानी इकट्ठा हमें नहीं होने देना है
1: जी।
0: क्योंकि इससे देखिए बहनों आपको पता है कि मच्छर पनपते हैं और डेंगू और मलेरिया जैसी जो बीमारियां हैं ना इसके बढ़ने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो आप अपने आसपास साफ सफाई रखें
1: जी। बिल्कुल, और सबसे ज़रूरी बात कि पर्याप्त नींद लें
0: जी
1: और नियमित व्यायाम करें। बहनों रोज़ाना 30 मिनट की सैर, योग और हल्का फुल्का व्यायाम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। इसलिए अपने जीवन में जो है इसे एक आदत बना लें कि सुबह उठकर के आप ज़रूर अपने बारे में सोचेंगी, थोड़े समय के लिए योग और प्राणायाम करेगी और बाहर सैर के लिए भी जाएगी। और सपना देखिए, अक्सर हमारी बहनें कहती हैं कि हम तो सुबह उठते ही काम में लग जाते हैं और वही हमारा योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज सब कुछ हो जाता है। तो बहनों जो योग क्रियाएं होती है, जो हमारे प्राणायाम होते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: काम करने के साथ हम इसे नहीं

0: छोड़ सकते, क्योंकि काम करने में हमारा शरीर जो है एक ही तरह की क्रियाएं करता है, लेकिन जब हम प्राणायाम लेते हैं बाहर शुद्ध हवा में, तो वो अच्छी हवा हमारे फेफड़ों को जो है साफ़ बनाने में हमारी मदद करती है।
1: बिल्कुल,
0: और जो योग क्रियाएं होती है वो हमारे शरीर में लचीलापन लाती है और हमें पहले से बेहतर महसूस करवाती है।
1: बिल्कुल। तो इसलिए बहनों, अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकालकर आपको क्या करना है, योग, व्यायाम, ये सभी चीज़ें जो हैं आपको ज़रूर करनी है। इसके अलावा मौसम के अनुसार आपको देखिए अपने कपड़ों का चुनाव करना है।
0: जी,
1: हल्के सूती कपड़े पहने, अगर आप बारिश में भीग जाएं तो आपको क्या करना है कि वो कपड़े घर जाकर जल्दी से आपको चेंज कर लेने हैं। और अगर देखिए जैसे हमारी कल्पना, बहुत सी बहनें वर्किंग है, ऑफिस जा रही है और बारिश में वो भीग भी जाती हैं, कई बार होता है कि भीग जाती हैं, तो आप ऐसे कपड़े पहने जो जल्दी से सूख जाए, है ना
0: जी। और अगर मान लो ज़्यादा गीले हो गए हैं कपड़े, तो उन्हें जो है आप तुरंत चेंज कर ले, क्योंकि जब उसके अंदर नमी रहती है ना, तो वो हमारे शरीर को भी गीला करती है और उस वजह से कई तरह के एलर्जिक जो समस्याएं हैं वो हमें हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: और इस मौसम में सबसे ज़रूरी है कि लाइट कलर के, जैसे कपड़ों की ही बात हो रही है, तो लाइट कलर के कपड़े पहनने के बजाय जो है थोड़ा सा जो है आप डार्क कलर के कपड़े पहने, क्योंकि अगर आप लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो उसमें देखिए आजकल तो कीचड़ वैसे ही होता है, तो उसके दाग धब्बे आपके कपड़ों में लग जाएंगे और आपका काम बढ़ा देंगे।
1: बिल्कुल कल्पना, तो इसलिए हम अपनी बहनों से कहना चाहेंगे कि वो इस बरसात के मौसम में गहरे रंग और प्रिंट वाले कपड़ों का जो है चयन करें, क्योंकि देखिए उन पर कीचड़ के जो दाग है वो कम दिखाई देते हैं। तो इसलिए आप ऐसे कपड़े पहने जो आपको कंफर्टेबल भी हो और इजीली वो साफ भी हो जाए।
0: जी, और कुछ ज़रूरी बात ये भी है बहनों कि जब भी आप घर से बाहर निकले ना, तो उस समय रेनकोट और छाता तो आपको रखना ही रखना है, लेकिन पानी की जो बोतल है वो भी अपने साथ ज़रूर रखिए, और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में जो है भोजन में विटामिन सी ज़रूर ले, जो कि फलों से मिलता है, और भरपूर फल खाएं, धोकर के खाइए, जैसे कि आंवला, संतरा, नींबू और मौसमी फल जो है अपने रूटीन में शामिल करें। तो बहनों, मौसम कोई भी हो, उसका असली आनंद हम तभी ले सकते हैं जब हम स्वस्थ, सुरक्षित और खुश रहेंगे।
1: बिल्कुल, याद रखिए बहनों, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखें तो हर मौसम हमारे लिए खुशियों और नई उमंगों का संदेश लेकर आता है।
0: जी,

0: देखिए कल्पना, हम आ पहुँचे हैं हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव चलते चलते में, और बहनों चलते चलते हम आपसे आज एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के जीवन से जुड़ा है। जी हाँ, आज हम आपसे बात करेंगे वन महोत्सव सप्ताह की।
1: जी बिल्कुल बहनों, वनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते।
0: जी
1: तो बहनों, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम वनों का संरक्षण करें, इनकी देखभाल करें और अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं।
0: बिल्कुल, और बहनों इसी के अंतर्गत देखिए प्रत्येक वर्ष 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री K.M. मुंशी द्वारा वनों के संरक्षण और लोगों में वृक्षारोपण के प्रति उत्साह जगाने के उद्देश्य से की गई थी।
1: जी, तो सपना अब बात करते हैं कि ये सप्ताह क्यों मनाया जाता है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो देखिए बहनों, जुलाई का पहला सप्ताह भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का समय होता है। इस दौरान बारिश होने से पौधों को पनपने के लिए सबसे अनुकूल प्राकृतिक स्थिति मिलती है, इसलिए इस समय के दौरान आप नए पौधे लगा सकती हैं। और ये त्यौहार स्थायी रूप से 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है ताकि ये मानसून की बारिश के साथ मेल खाए, और जब आप इस दौरान कोई भी पौधा कोई भी वृक्ष लगाते हैं तो वो अच्छे तरीके से लग जाता है और वो हरा भरा होने लगता है।
0: बिल्कुल कल्पना, क्योंकि देखिए ना, इस सप्ताह में जो है ना वो बारिश काफ़ी अच्छी होती है
1: जी,
0: तो वो अपनी जड़ों को अच्छे से पकड़ लेता है और वो अच्छे से पनपना शुरू हो जाता है। तो बहनों जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं।
1: जी, और इस महोत्सव के दौरान होने वाली जो गतिविधियां हैं उनके विषय में भी अब बहनों से बात कर लेते हैं।
0: जी,
1: तो राष्ट्रव्यापी आयोजनों में वृक्षारोपण अभियान, जागरूकता अभियान, विद्यालयों में पोस्टर और निबंध प्रतियोगिताएं, और साथ ही साथ सामुदायिक शपथ ग्रहण समारोह आदि इसके अंतर्गत आते हैं, इसमें शामिल होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है बहनों कि इस महोत्सव के दौरान जो है राष्ट्र स्तर तक कई तरह के आयोजन किए जाते हैं जिसमें वृक्षों के महत्व के बारे में सबको जागरूक किया जाता है और सभी को इसका हिस्सा बनाया जाता है।
0: बिल्कुल, तो हमें भी इसका हिस्सा बनना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। और देखिए कल्पना, पेड़ लगाने की हम बात कर रहे हैं ना, तो पेड़ लगाना ही काफ़ी नहीं है बल्कि उस पेड़ या पौधे की पूर्ण रूप से देखभाल करना भी देखिए उतना ही ज़रूरी है जितना हम एक पेड़ लगाने के लिए कह रहे हैं। तो आप एक पौधा ज़रूर लगाएं लेकिन उसकी देखभाल ज़रूर करें।
1: जी, और देखभाल पूर्ण रूप से करें। जब आप एक पौधा लगाती हैं तो

0: उस पौधे के लगाने से लेकर उस पौधे की किस तरह से ग्रोथ हो रही है, कैसे वो बढ़ रहा है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं हो रही है, ये सब चीज़ों का ध्यान जब आप रखेंगी ना तो वो एक विशाल वृक्ष बनेगा। और कल के लिए जब वो विशाल वृक्ष बन जाएगा तो आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए वही सबसे बेहतरीन उपहार होगा।
1: जी बिल्कुल सही कहा कल्पना आपने। तो बहनों, थोड़ा सा समय निकाल कर इस मौसम में आप पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी इन कार्यों के प्रति प्रेरित ज़रूर करें।
0: जी।

0: देखिए बहनों, बारिश का मौसम है और ये बारिश भी ना हमें सिखाती है कि हर बूंद की अपनी अहमियत होती है। जिस तरह बारिश के बाद सूखी धरती हरी भरी हो उठती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी छोटी छोटी सीख बड़े बड़े बदलाव की शुरुआत करती है।
1: जी, तो बहनों आइए इस खुशनुमा मौसम की ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में भी उतारे। अब तो हमारे कार्यक्रम का समय भी संपन्न हो रहा है, आपसे जल्द होगी मुलाकात। दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सम्मेलन मीडियम वेव पर। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। एक बजने वाला है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि VBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा की 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत GRAMJI योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत GRAMJI योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत, बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay.

शिमला पर यह समय रहता है म्यूजिक मस्ती का। संगीत वो जादू है जो बिना कुछ कहे ही दिल की हर बात कह देता है। तो तैयार हो जाइए सुरों और धुनों की मस्ती में डूबने के लिए। स्वागत करते हैं आपका म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम में। आगाज करेंगे तुमसे अच्छा कौन इस फिल्म के इस गीत के साथ। इसे गाया है सोनू निगम ने, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

103.7 मेगा हर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम। जिंदगी अगर एक सफर है तो संगीत उसका सबसे खूबसूरत हम सफर। तो आइए इस सफर को और भी यादगार बनाते हैं। दिल चाहता है इस फिल्म के इस गीत के साथ, इसे गाया है शंकर महादेवन ने, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ है आप, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। हर गीत की अपनी एक कहानी होती है, हर धुन दिल को छू जाती है। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं इस महफिल में सुर फिल्म का ये गीत। इसे गाया है लकी अली ने,

आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप, जहां दिल झूमे, पैर थिरके और चेहरे पर मुस्कान आ जाए, वहीं से शुरू होती है असली मस्ती। जी हां, अब आपको सुनवाएंगे ये गीत। इसे गाया है उदित नारायण ने, हमने इस गीत को लिया है फिल्म गदर से।

0: आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
2: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: बेजान जिंदगी में कोई मनमीत होना चाहिए, मन कमीत ना हो तो साथ संगीत होना चाहिए। जी हाँ, एकदम सही ट्यून किया है आपने। 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला। बोरियत को कहो टाटा बाय बाय और वॉल्यूम करो हाय, क्योंकि लेकर आए हैं आपके लिए म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाएंगे कोई मिल गया फिल्म का ये गीत।

0: 103.7 MHz आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप और एफएम शिमला पर आनंद ले रहे हैं आप म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं पहले ये संदेश।
1: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
2: अच्छा, इसमें क्या होगा?
1: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
2: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
2: अच्छा,
1: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
0: अब आप आनंद लेंगे खुशी फिल्म के इस गीत के साथ। इसे गाया है वसुंधरा दास और साथियों ने, जावेद अख्तर की बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

इस गीत के साथ आज म्यूजिक मस्ती के सफर में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 2 बज चुके हैं और एफएम शिमला पर ये समय रहता है गीतों के कुछ चुनिंदा रंग कार्यक्रम सब रंग का। जी हाँ, आगाज करेंगे कैलाश खेर के गाए इस गीत के साथ।

आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप सुन रहे हैं सप्रंग कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाएंगे नुसरत फतेह अली खां की गाई ये कवाली।

नुसरत फ़तेह अली खां की गाइस कवाली के साथ आज सबरंग कार्यक्रम में बस इतना ही। 2:15 होने को हैं, अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र दोपहर हिंदी समाचार के लिए। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया।

0: मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन GRAMJI अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
3: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत GRAMJI योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत GRAMJI योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू

0: के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीनी स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
1: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
3: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
4: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकता

0: आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
1: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
2: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। एफएम शिमला पर यह समय रहता है शिखरों के स्वर कार्यक्रम का। जी हाँ, हिमाचली लोकगीतों का आनंद आप लेते हैं इस कार्यक्रम में। पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवाएं, कलकल बहती नदियां, हरे भरे देवदार के जंगल और रंग बिरंगे मेले, इन सब की झलक हिमाचली लोकगीतों में साफ दिखाई देती है। इन गीतों में खुशी भी है, अपनापन भी और अपनी मिट्टी की सुगंध भी। तो आइए आगाज करते हैं अंकुश भारद्वाज के गाए इस लोकगीत के साथ।

जोगिंदर सिंह हब्बी और साथियों की आवाज़ में अभी आपने सुना ये लोकगीत। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। अब आप सुनेंगे पूरन चंद का गाया लोकगीत।

103.7 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप और एफएम शिमला पर हिमाचली लोकगीतों का आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम शिखरों के स्वर में। पिंको देवी का गाया ये लोकगीत अब आपको सुनवाते हैं।

मनसा पंडित का गाया ये लोकगीत अभी आपने सुना कार्यक्रम शिखरों के स्वर में 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं। आप सुन रहे हैं हिमाचली लोकगीत। अब आपको सुनवाएंगे पुष्पा और गामावती गर्ग का गाया ये लोकगीत।

पुष्पा और गामावती गर्ग का गाया ये लोकगीत अभी आपने सुना कार्यक्रम शिखरों के सुर में। इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही।

अब से कुछ ही देर बाद 3:10 पर आप सुनेंगे ओल्ड हिट्स पर आधारित फिल्म संगीत। युवा साथी अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनेंगे युवानी 3:30 पर। आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। 3 बजने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 387.6 मीटर, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। 3 बजने को हैं, अब प्रादेशिक समाचार होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने आज से लागू हुए विकसित भारत ग्रामीण विकास अधिनियम 2025 विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत बढ़ी हुई श्रम दरें अधिसूचित की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में श्रम दर में वृद्धि की गई है। पहली बार प्रतिदिन 300 रुपये की अंतरिम आधार मजदूरी दर लागू की गई है। इस अधिनियम के तहत अधिसूचित कोई भी श्रम दर 300 रुपये से कम नहीं होगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य जगत के लोगों को उनके अटूट समर्पण के लिए बधाई दी है। एक वीडियो संदेश में नड्डा ने देश भर के डॉक्टरों की बेहतरीन प्रोफेशनलिज्म और मानवता के प्रति उनकी सेवा की सराहना की है। उन्होंने लोगों की तकलीफें दूर करने, जान बचाने और

0: मरीजों की देखभाल के ऊंचे मानदंड बनाए रखने के लिए उनके अथक प्रयासों को याद किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि डॉक्टरों का निस्वार्थ समर्पण और मजबूती देश को प्रेरित करती रहेगी और एक स्वस्थ भारत बनाने की सामूहिक कोशिश को मजबूत करेगी। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज व अस्पताल नाहन में डॉक्टरों के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान समाजसेवी संस्था इनर व्हील क्लब ने उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले डॉक्टरों को सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा। क्लब की अध्यक्ष सीमा वर्मा ने बताया कि चिकित्सक हर परिस्थिति में लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और चिकित्सकों का सम्मान करना समाज का दायित्व है।
1: आज इनर व्हील नाहन क्लासिक की तरफ से डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन किया गया और 3 डॉक्टर्स को हमने सम्मानित किया है। हम सोशल वर्क करते हैं, जैसे मरीज हो आपके, कोई डायलिसिस पे है, उनको कुछ सेवा की जरूरत होती है तो उनको भी हम उनकी सेवाएं देते हैं।
0: प्रदेश भाजपा महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अराजकता और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का दौर चल रहा है। शिमला जिला के जुब्बल क्षेत्र में आयोजित भाजपा के जिला महासू प्रशिक्षण महाअभियान के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार विकास के हर मोर्चे पर विफल रही है और किसान, बागवान व युवा सभी वर्ग सरकार की नीतियों से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है, लेकिन सरकार जनहित के मुद्दों का समाधान करने के बजाय केवल राजनीतिक प्रतिशोध और सत्ता बचाने में लगी हुई है। सिकंदर कुमार ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों और भ्रष्टाचार को गाँव गाँव जाकर जनता के समक्ष उजागर करने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश की जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लोकतांत्रिक तरीके से करारा जवाब देगी और हिमाचल में सुशासन व विकास की नई सरकार बनेगी। पूर्व स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री राजा विजेंद्र सिंह का आज सुबह दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राजा विजेंद्र सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राजा विजेंद्र सिंह का प्रदेश के विकास, विशेषकर सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज कल्याण के लिए किए गए उनके कार्यों को प्रदेशवासी सदैव याद रखेंगे। राजा विजेंद्र सिंह वर्ष 1977 से 1993 के बीच 5 बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्होंने मई 1982 से अप्रैल 1983 तक मुख्य संसदीय सचिव के रूप में कार्य किया। इसके अलावा राजा विजेंद्र सिंह ने वर्ष 1983 से 1984 और 1988 से 1989 के दौरान स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री के पद पर भी कार्य किया। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और आज सुबह से ही राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि आगामी एक सप्ताह तक मॉनसून के बेहद सक्रिय रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में मॉनसून तय समय से करीब 5 दिन की देरी से पहुँचा है, लेकिन आगामी एक सप्ताह तक इसके सक्रिय रहने का अनुमान है।
2: साल जो है हमारा मानसून जो है 30 जून को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। आज 1 जुलाई को मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर चुका है। इस साल लगभग 5 दिनों लेट मानसून हमारे यहाँ पे पहुंचा है। मानसून जो है पूरे प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाला है, जिसका असर जो है हमें लगभग सभी जिलों में रुक रुक के देखने को मिलता रहेगा अगले 5 to 7 डेज तक। मुख्यतः हमारा जो कांगड़ा जिला है, शिमला जिला है, उसी के साथ जो मंडी और सिरमौर जिला है, वहाँ पे 2 जुलाई, 3 जुलाई और 5 जुलाई को जो है भारी से अत्यधिक भारी बारिश ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद आकाशवाणी शिमला से लीजिए प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, परिवर्तन के 11 वर्ष। वाचिका है प्रभा शर्मा।
4: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के आज 11 वर्ष पूरे हुए हैं, जो भारत के डिजिटल परिवर्तन की यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है।

0: इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। 2015 से पहले सरकारी सेवाओं का मतलब अक्सर लंबी पंक्तियां, कागजी कार्रवाई और सीमित संपर्क होता था। डिजिटल इंडिया ने इंटरनेट की पहुंच बढ़ाकर और सेवाओं को ऑनलाइन लाकर डिजिटल अंतर को कम करने में सहायता की। इसने डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत किया और सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और अधिक सुलभ बनाया। अब लाखों लोग स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बैंकिंग और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। पिछले दशक में डिजिटल इंडिया भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की नींव बन गया है। भारत अब ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट से सबसे आगे है, जिसमें UPI मात्रा के लिहाज से दुनिया भर के लेन देन का लगभग 49% संभालता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 12 से 14% का योगदान देती है। आशा है कि अगले दशक में ये लगभग 5वां हिस्सा योगदान देगी। डिजिटल इंडिया ने अलग अलग क्षेत्र में नवाचार, स्टार्टअप ग्रोथ और प्रौद्योगिकी को अपनाने की गति को तेज किया। इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा में भारत की क्षमताओं को भी मजबूत किया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को 9 स्तंभों के आधार पर बनाया गया था, ताकि डिजिटल पहुंच को बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत ढांचा तैयार किया जा सके, जिनमें पहला है ब्रॉडबैंड हाईवेज। पूरे देश में डिजिटल अंतर को पाटने के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। भारतनेट 1 और भारतनेट 2 के तहत देश भर में 2.22 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। जनवरी 2026 तक लगभग 2.15 लाख ग्राम पंचायतें यानी लगभग 97% पंचायतें जुड़ चुकी हैं और देश भर में करीब 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। इससे ग्रामीण भारत में ई गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और स्थानीय उद्यमिता को काफी मजबूती मिली है। दूसरा स्तंभ है मोबाइल कनेक्टिविटी तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना। डिजिटल गवर्नेंस और समावेशी आर्थिक वृद्धि के लिए भरोसेमंद ब्रॉडबैंड जरूरी है। मार्च 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सब्सक्राइबर की संख्या बढ़कर 106.58 करोड़ हो गई। इससे ग्रामीण भारत में भरोसेमंद लास्ट लाइन डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत हुई। तीसरे स्तंभ में सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से आसानी से उपलब्ध डिजिटल सेंटर नागरिकों को अपने घरों के पास सेवाएं पाने में सहायता करते हैं। अब 6.5 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र और 1.6 लाख डाकघर डिजिटल सेवाएं दे रहे हैं। चौथे स्तंभ में ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के जरिए सरकार में सुधार करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाएं देने के लिए बनाया गया ई गवर्नेंस पेपरलेस एकीकृत और जनता केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देता है। आज डिजीलॉकर और नेशनल सिंगल साइन ऑन इकोसिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म सर्टिफिकेट, आवेदन, भुगतान और सार्वजनिक सेवाओं तक आसानी से पहुंचने में मदद करते हैं।
1: सामयिक चर्चा आकाशवाणी शिमला से प्रसारित की गई। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
2: MHz आकाशवाणी FM शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 3:10 हुए हैं। FM शिमला पर यह समय रहता है ओल्ड हिट्स पर आधारित फिल्म संगीत का, और इसका आगाज करेंगे तलाश फिल्म के इस गीत के साथ। इसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, मजरूह के बोल और एस डी बर्मन का संगीत।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। लोकवाणी कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। शुक्रवार यानी 3 जुलाई 2026 प्रातः 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम लोकवाणी का विषय है हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल। यदि आप इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो आप हमें शुक्रवार यानी 3 जुलाई 2026 को प्रातः 8:45 से 9:15 के मध्य फ़ोन नंबर 2808034 और 2808152 पर संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी आकाशवाणी स्टूडियो

यू में उपस्थित रहेंगे। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं ओल्ड हिट्स पर आधारित फिल्म संगीत। महल फिल्म का ये गीत आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में।

एक फूल दो माली, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, प्रेम धवन के बोल और रवि का संगीत। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं ओल्ड हिट्स पर आधारित फिल्म संगीत।

आराधना फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल और एसटी वर्मन का संगीत। इसी गीत के साथ आज ओल्ड हिट्स पर आधारित फिल्म संगीत में बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप। अब युवा साथी सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

सभी युवा साथियों को नमस्कार। मैं प्रथा मेरे युवा दोस्तों का इस खास कार्यक्रम युववाणी में स्वागत करती हूँ। आज के इस मौसम के मिजाज को देखकर मेरा दिल भी झूम उठा है। जी हाँ, खिड़की से बाहर देखो तो चारों तरफ एक ही गूंज है। देश के कोने कोने को भिगोता हुआ आखिरकार मानसून हमारे प्यारे हिमाचल प्रदेश में भी दस्तक दे चुका है। पहाड़ों पर छाई वो मखमली हरियाली, धुंध की वो सफ़ेद चादर जो देवदार के पेड़ों को गले लगा रही है, और वो सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने कोई खूबसूरत सा ख्वाब बुन दिया हो। वैसे दोस्तों, जब बारिश की बूंदें खिड़की पर दस्तक देती हैं तो दिल में बड़ी हलचल सी मच जाती है। ज़रा मुझे बताइए, आप लोग ऐसी बारिश में क्या करना पसंद करते हो? क्या आप टीम चाय हो या फिर टीम कॉफ़ी? क्योंकि इस मौसम में हाथ में गर्मा गर्म चाय

या कॉफी का कप हो तो बात कुछ अधूरी नहीं लगती। और हाँ, खाने के शौकीन जरा ये भी बताएं कि इस बारिश में आपकी पहली पसंद क्या है, गर्मा गर्म पकौड़े, कोयले पर भुना हुआ भुट्टा या फिर तीखी चटनी वाले मोमो। कुछ दोस्तों को तो इस रिमझिम बारिश में छतरी तानकर मॉल रोड या पहाड़ों की पगडंडियों पर घूमना पसंद होगा, तो कुछ मेरी तरह होंगे जिन्हें बस खिड़की के पास बैठकर हाथ में चाय का कप थामे धीमा सा संगीत सुनना पसंद है। तो चलिए इसी पसंद को खूबसूरत बनाते हैं, सुनते हैं ये लाजवाब नगमा।

क्या आप जानते हैं दोस्तों, ये जो आसमान से पानी बरसता है ये सिर्फ पानी नहीं है, ये हर इंसान और हर जीव के लिए एक अलग जज्बात है। हर बूंद की अपनी एक अनोखी कहानी होती है। ज़रा सोचिए, हमारे किसान भाइयों के लिए ये सिर्फ एक मौसम नहीं है बल्कि उनकी उम्मीदें हैं जो खेतों में ललहाने को बेताब हैं, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्लास की खिड़की से बाहर देखते हुए खो जाना है। जब हिमाचल के खूबसूरत रास्तों पर टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए ये मानसून एक जादुई एडवेंचर बन जाता है। वहीं रोज़ दफ्तर जाने वालों के लिए थोड़ी सी भागदौड़, तो हमारे दुकानदार भाइयों के लिए चाय पकौड़ी की बढ़ी हुई बिक्री की खुशी, और बच्चों को तो रंग बिरंगे कागज़ की नाव बनाकर पानी में तैराना मानो ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत लगती है। हमारे फोटोग्राफर दोस्त भी इन दिनों पत्तियों पर ठहरी बूंदों को कैद करने के लिए तैयार बैठे हैं। सच कहूँ तो ये मानसून हमारी नदियाँ, जंगल और पूर्ण पर्यावरण को एक नई जिंदगी सौंपता है। चलिए हवाओं में थोड़ी और ताजगी फैलाते हैं और सुनते हैं एक और खूबसूरत नगमा।

आकाशवाणी एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, अब वक्त है थोड़ी सी समझदारी और जिम्मेदारी की बात करने का। मॉनसून जितना खूबसूरत है उतनी ही जिम्मेदारी भी साथ लाता है। बारिश का असली मज़ा तभी है जब हम सुरक्षित रहें। घर से निकलते समय छतरी या रेनकोट साथ रखें। पहाड़ी इलाकों में गाड़ी धीरे चलाएं क्योंकि सड़कें फिसलन भरी हो जाती है। उफनते नाले या पानी से भरी सड़कों को पार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मौसम विभाग की चेतावनियों और एडवाइजरी पर हमेशा ध्यान दें। इस मौसम में साफ पानी पिएं और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। फ़ोन और अन्य गैजेट्स को प्लास्टिक पाउच में सुरक्षित रखें। बिजली कड़कने के दौरान खुले मैदानों या पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। और हमारे ट्रैकर दोस्तों से भी यही कहना चाहूँगी कि ख़राब मौसम में ऊँचाई वाले ट्रैक से परहेज़ करें। सबसे ज़रूरी बात, अपने आसपास सफाई रखें, प्लास्टिक या अन्य कचरा इधर उधर ना फेंकें। दोस्तों, सुरक्षा का वादा खुद से कीजिए। आइए सफ़र को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये अगला गीत।

तो साथियों, अब वक्त है कुदरत के उस गंभीर रूप को भी समझने का जो कभी कभी हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा हो जाता है। मानसून जहाँ खुशियाँ लाता है, वहीं कभी कभी भारी बारिश अपने साथ मुश्किलें भी लेकर आती है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे हिमाचल प्रदेश ने बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ जैसी गंभीर आपदाओं का सामना किया है। जब पहाड़ दरकते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं और नदियाँ अपना रौद्र रूप दिखाती हैं, तब एहसास होता है कि प्रकृति जितनी ममतामयी है उतनी ही शक्तिशाली भी है। इसलिए हमें सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि इसका सम्मान भी करना चाहिए। ऐसे समय में राहत और बचाव दल, हमारे फौजी भाई और स्थानीय प्रशासन दिन रात लोगों की मदद में जुटे रहते हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है कि बेवजह यात्रा से बचें, मौसम विभाग की आधिकारिक एडवाइजरी का पालन करें और संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें। तो आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं ये धुन।

अब जब हम अपने इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, तो क्यों ना बात उम्मीद, हौसले और नई शुरुआत की जाए। कहते हैं हर काली रात के बाद उजली सुबह जरूर आती है, हर भारी बारिश के बाद आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष खिलता है। बारिश की बूंदें हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें रुकना नहीं चाहिए। जैसे सूखी ज़मीन पर बारिश की एक बूंद नया जीवन जगा देती है, वैसे ही हमें भी अपनी चिंताओं, नाकामियों और उदासी को पीछे छोड़ देना चाहिए। ये मानसून एक मौका है कुछ नया सीखने का, किसी पुराने रूठे दोस्त से फिर बात शुरू करने का। छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए और इस प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त कीजिए। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हर मौसम खूबसूरत लगेगा। तो आइए इसी नई ऊर्जा के साथ सुनते हैं आज के सफ़र का ये आखिरी और बेहद चुलबुला गीत।

तो साथियों, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को विराम देने का। युवा दोस्तों, ये मॉनसून हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, जैसे धैर्य, जिम्मेदारी और सबसे बढ़कर उम्मीद कि हर ढलता दिन एक खूबसूरत सवेरा ज़रूर लाएगा। प्रकृति का ख्याल रखिए, पेड़ लगाइए और एक दूसरे के मददगार बनिए। चंद पंक्तियाँ याद आती है कि भीगने दो ज़मीन को, एक नया चमन लहराए, हर एक बूंद खुशियों का नया पैगाम लाए। संभल कर चलना मेरे यारो बदलते मौसम में, कि ये वक्त तुम्हारी ज़िंदगी का सिर्फ मुस्कान लाए। एक बात याद रखें कि प्रकृति का करें सम्मान, तभी सुरक्षित रहेगा हमारा जहान। मैं प्रथा अब आपसे इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए ख्याल और नए गीतों के साथ। मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए आकाशवाणी FM शिमला। धन्यवाद।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 4 बज चुके हैं और एफएम शिमला पर ये समय रहता है स्थानीय सूचनाओं के साथ फिल्म संगीत का आनंद लेने का। जी हाँ, आगाज़ करेंगे फिल्म संगीत का जब वी मेट फिल्म के इस गीत के साथ। इसे गाया है श्रेया घोषाल ने, इरशाद कामिल के बोल हैं और प्रीतम चक्रवर्ती का संगीत।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप, और आइए बात कर ली जाए मौसम की। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून के सक्रिय होते ही मौसम विभाग ने 1 से 4 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। निचले और मध्यवर्तीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी। और 2 और 3 जुलाई को बारिश का सबसे अधिक असर जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश के कारण संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचें, लोगों से नदी नालों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। आइए अब आपको सुनवाते हैं बागी फिल्म का ये गीत मोनाली ठाकुर और मीत ब्रदर्स की आवाज़ में।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब आपको सुनवाएंगे वेलकम फिल्म का ये गीत, शान और साथियों की आवाज़ में शबीर अहमद के बोल हैं और साजिद वाजिद का संगीत। Welcome.

ओम शांति ओम। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और शान की आवाज़ में, जावेद अख्तर के बोल, विशाल शेखर का संगीत। इसी के साथ आज फिल्म संगीत में बस इतना ही। आज का ये सफ़र आपने तय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचि ठाकुर के साथ। 4:20 होने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। सबसे पहले सुनिए स्पीति कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला के साथ ही FM 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है।

जुले पितिमीमा छाङमाला यी आकाशवाणी सिमलाइनु मु छिरिङ पाल्मो थिरिङ किलेरिम गचोक नाइन थिरिङ मिशन इन्द्रधनुष रङ वन महोत्सव रङ ग्याकर कि लन कर्ला सु नाइन दिकि याम्पुला लुन्यन पुन्यनपु काइनिन नाइन गन्सोला मिशन इन्द्रधनुष कर्ला छिङ्ने छुम सु नाइन मिशन इन्द्रधनुष ते अजी ग्याकर कि मिनङ मेते खाक छिन्मु तङ खप तंगना की अभियांचिक एनु डीओजी केंद्रीय मंत्रालय सु निशु चांगा दिसंबर नितोंग

chubjila gozuwa diki leha te tu yala khap tangja tang ane akon tu yala khap tangja inu di abhyan ki min inda dhanush chila parva sena di mission la dun khak chinmu naza tu yala oti su bachai chuya phila oti te chi chi nu basena diphtheria kali khansi tetanus polio tang tb kali yang hepatitis b hotuk nazaya nyampula thuzut la khap tangja chik inu mission inda dhanush ki khak chinmu leha te chi nu basena top tu yala timu chai khap tangja tu yokan ani yala kharmet khap tangja yang thuzut la khap tangja खल्दे खाप तंगजा म्यांगलू दे नौती फेल खाप की सुविधा आयते क्याल जा दिया अभियान की थारिंग बुयुल तंग आदिवासी तंग कठिन सने यंग थारिंग बुयुल याला यंग खाओ अच्छे जगह याला दी सेवा दे क्याल जा दी योजना की मीन इंद्र धनुष चिलवा फरवास है ना इंद्र धनुष ला दुन रंग कंचोरे यंग आदि चिकपा और नाजा का मीना यंग दुन खाक छिनमु का অতীতে চিজা টংজা মেতা অতীতে মিনাং মেতি খাক ছিনমু ইনু মিশন ইন্দ্র ধনুষ কি নাং ইয়াং টু ইয়ালা নাজা কি খাতার পেচা তুজলা খাপ তাংজা অতি নাজা এতে চি চি ইনু আসে না পোলিও ইয়াং টিবি ডিপথেরিয়া কালি খাঁসি টিটনেস হ্যাপাটাইটিস বি ইয়াং খসরা রুবেলা নিমোনিয়া রোটা ভাইরাস না ইয়াং শেলনা চৌসি নাজাতে ওগা टू यकन आने याला टिटनेस की यंग मीनाक मिट्टी खाक छिन मु खाप का तंगना यंग दिस वी आमा याला टू समा के दें याला यंग खाप तंग जा मीनाक मिट्टी जरूरी होगा सरकार सु दी अभियान नांगला और याला लहा पेचा यंग ची और दी मिशन इंद्र धनुष ले गौस हुआ इनो दी लिहाते टू यकन आने याला खरमेत खाप तंग जा और तोलेला ग्यू योगा दी ला आशा वर्कर की कार्यकर्ता यंग लेहा फेकन सकाउती अला आंगनवाड़ी की लेहा फेकन ए एन एम की यंग डॉक्टर या रंग यंग स्वास्थ्य की लेहा फेकन ची और नौती अला खांगबा खांगबा रूपोचिल्लोन ते चाहते यंग मी अला लापचा गिप चाहते हिंदी की लेहा ची किनो मिशन इंद्र धनुष की फंथोक या ते ची इन उपास है ना टू याला नाजा याला फीला लड़ाई फेचा यांग जूहू ला टनते जोया फीला नाजा छिनमु या ना सू बचाई चुया फीला टू याला तुझुत ला खाप तंगजा रंग कौनजे ठोंजे की दर याला कम चुया ते हीनु यांग सुबाते चीनो जिमित या की फीला मूल की खाऊ ते न्यून तंगजा रंग और समाज रंग ग्याकर की स्वस्थ फीला लहा पेचा दंग तिन की मिया ला खाप तंगजा की फीला गालापचा गिपचा रंग मिया यंग दी की समलोला मातंग बायंग जिनमा लाभ या न्यंजी दी की फंतो गया ला मान्यदा यंग और अफाउंस है ना यंग जून की ले लाभ या ला न्यंजी दी खाप मातंग बा देता हाँ दी खाप ते मिनंग में ती सुरक्षित योगा रंग वैज्ञानिक या सुयंग दी की फीला तावा रिक पका छाई होती फीला दी खाप के पका और जो गंगबुला आवा आमा या की फर्ज हिनो की तोले ला तुझे ला खाप के पचा की लोन ते चा यंग और जी तो जिमेत या सु खाप मातंग बा लू दे ना होती है ला खाप तंग जा की अभियान के बारे ला लोन ते चा यंग और जी स्वस्थ के अंदर या लो खाप तंग जा फीला और जोर शोरों से और लापचा गेप जा कि उधर पोची खाप के चंद तो यंग और डिस्पेंसरी चौक से होना होती है रो यंग और या तो याला और या तो याला यंग टू याला और जी क्या कर कि ते दी पहचान चिकी नो या मिशन इंद्र धनुष ते सरकारी योजना चिक मांदा और जी तोप की लहा इनो और जुहूला नाजा मैते चुया फीला तेन टू के दें या तोप याला लू दें याला गाल अपचा गिपचा की खापते मिनांग में ती जरूरी इनो तेन यंग यंग मी याला जागरूक पहचाते होया कि लेहा चिकिनो तोप टू याला दी अधिकार खापते खोजा या कि अधिकार इनो स्वस्थ आमाते यंग स्वस्थ होमा का टू याला तेका दी ते औजी ग्या कर कि दिमंग शांत चिकिनो दी ते यंग मिशन इंद्र धनुष कौला सिग्नी सुम शुआइन था इगापला आने सिंह डोलमा की लुनियन

Ane tering dolma kilung yan pugabla, ta van mohotsav kolla, tsigni sumchunain. Van mohotsav te oji gyakar ki minang meti khakchen mu koryuk fila lehachik ino. Di lehate minang meti pang changma gepcha. Pang changma tangria ya la khatar pecha te miya ki koryuk fila jakruk te mang du tangja. Lota julai chik su julai dun. सुपा ग्याकर की वन महोत्सव मनाई पेका दी ते औजी लापटा तंग महाविद्यालयों रंग सरकारी दफ्तर तंग सामाजिक संगठनों की न्यामपुला पंग गेपचा की फीला कार्यक्रम का तंगा वन महोत्सव ते लो चुरु रंग निपचूला केंद्र सरकार की कृषि रंग खाद मंत्री सु गौसुवा खोंग की काचा ला औजी ग्याकर की फीला पंग तंगचांगमा मांग तु गेपचे नियोजी ग्याकर की ते मिनांग मेती याकपू रंग सुरक्षित योगा चांगमा तंग पंग ते होजी मिजे की तारा चिक इनु होती सु होजा याला संगमा ऑक्सीजन यांग ओंगा ते होती कार्बन डाइऑक्साइड ला फिताला तोंगा होती सु होजी वातावरण ला संगमा चुआ यांग पंग यांग गेपचा नी ते मिनांग मेती साग्याय का मिनांग मिती मजबूत रंग याकपु ड्वा रिया या सु यंग शिंगार या औषधि सनमन फल यंग मेंदोक रबर गोंद शहद तंग रिया की सब्जी मिनांग मिती रिया ला योंगा मी या ते रिया या सु औजी यंग लेहा ते दीना फेंका दिया ते न्यामपुला रिया की यंग छा बू सेमजिन और यह कि यंग देसा है यंग खोंजाया यंग शिक्षा में था सु में और या दिला खतर पहचा रिया या ला नष्ट मचुआ यंग याक पूछा है खतर पहचाते दांग तेरें कि नामला सेने यंग ग्लोबल वार्मिंग सेने दी जलवायु या देवची मिनांग में ती खाऊ का और या ला सामना चुया था दी सु यंग खाऊ ते मिनांग में ती पूछी और फिला यंग याक पू पंग गेप चाहते होती कि ओया की जिम्मेदारी ची कि यहाँ होती ला यहाँ ओया रक्षा का भेजा पंग या ते छरवा यहाँ होती या ते मांग दू तंग जा थावा या ला मजबूत चुया ते खोरू या ला संतुलन चिक चुया ते मिनांग में ती खाक छिन मु ले आई नू वन महोत्सव ते यहाँ दी सप्ताह चिक पू मंदा हो जा तो भी ला जिम्मेदारी चिक इनू यहाँ ओया पंग ते मांग दू चुया फिर यहाँ खतर ते होती या ला दिमुचाई भेजा दांग तिरिंग की खाऊ ते चीन हुआ से ना यहाँ दिखाऊ नांगला ओय यंग गैलसा यारू देखें ते यंग जनसंख्या मांगबू पूछी औती कान दिया ला खाऊ मिनांग में ती पूछियो का यंग ओय टू या किची भूमिका इनवा यंग टू या किची लेहा इनवा से ना लौता यंग मांग मांगबू पंग गेपचा पंग याला यंग ओया खतर पहचा ओय शू या कि न्यून उपयोग चुया यहाँ हमें शू रहती है कि न्यून उपयोग चुया छू तंग बिजली की बचत पहचा यहाँ खोयू क्या कि ची लेहा होना होती है अला बाग निंजा और यहाँ की जिम्मेदारी जिम्मे तंग समाज अला पंग या फिला मंग दू गेपचा ला वाया खोजला सेचा वाया लोनते चा दी की योजना की खाऊ ते ची नुपासना यहाँ दंग अंशोले ची नुपासना यहाँ तंग दरिया वायु प्रदूषण से ना यहाँ लूहू या कि बावा ते मांग दू फुचियो का तापमान देन लौता मांग दू बढ़ाई फुन रहा यहाँ वाया ठनमू तालो या चुक ठनमू रहा होती है मांग दू फुचिता छारवा की संतुलन का मिनांग में ती बढ़ाई फुचियो का ते यहाँ अल्लाह वही पीती है नांग दू छरवा मिगे बा ता तालो जी है दू छरवा या मांग दू पुद्दे का रिया या ला प्रकृति आवास या तेन सन्या सन यहाँ गुफा चोरे चुई और सेमचन या होती है ला अतिया यंग प्राकृतिक ची और नई अतिया ला नुकसान ते मांग तो पूछोगा दी कि यहाँ बोला तुझो याला रिया ला खाता ते और पहचा यंग तिंगला वही टू या वही याला अति फिला याक पो होगा अति फिला और दी लहा ला मांग दो तंगुशा और जी तुझो इतला पंग गेपचा ते मिनांग में ती जरूरी होगा थालो और पंग ची गेपचा नी नामगर और होंगन टू याला यंग याक पो रंग दिमु होगा दी ते होया पंग याला मांग दू तंग जने और अंगला याकपू तेने फिता नौंगन मी याला गाल अपचे गेवना होया बाबा मातंग होती है होया

मियाला जागरूक पहचाने औरंग ला ओ पीति ओय या या कर रंग ओय प्रदेश या ते मीना मिति या पोंगा तेने तिंगशोला वन महोत्सव ते ओया दी सप्ताह चिपू मनाई मापेता और जो गंगबू ला ओ जिम्मेबारी इनो कि दी ते लेहा पहचा ओया पंग शेखची का इना चिक चिक का सुखचा तोबला ओया पे यंग लापचा गेपचा ओ मी जिमेत ओ सरकारी मी या सु ना होती है लापचा गेपचा करयुग याला संगमा पर्चा दी यंग ओय चुक से नंगन बु रिया थन बु संगमा याक पो नती याला ओय याला तिंगला मिजेला याक पो योंगा तेने पंग चिक चिक मी चिक चिक जिमे चिक मी यंग पंग तंग मांगबु गेपचा ओय गंगबु की जिम्मेबारी इनो दी ते यंग वन महोत्सव की कोला ओय याला चिक नि सुम हिन था दी गबला आने दोर्जे मांगमु की लुनियन बुची नियंदा सा

या तेची की यांग आदि सूचित पेगा सका युल की यर्गित पेगन मंत्रालय सु जारी चुएन लॉन या का राज्य याला तेका सका यांग केंद्र शासित प्रदेशों नांगला यांग मूल की दरला मांग दू छावा अंशोला शक्ता या सुमग्या मूल की योजी लेहा पेकन याला थोपका सका खोंसू शुआ दी नांग दू यांग लेहा याल की मूल की दर ते सुमग्या मूल यांग न्यून तेचा मेता छावा तिरिंग राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस हिनु दिनांगला ओई स्वास्थ्य मंत्री सु जगत प्रकाश नड्डा सु यांग ओजी लेहा फेकन नदी नाजा की लेहा फेकन मियाला मीनांग मेती मुबारक का खोंगसु तेपा खोंगसु शुआ वीडियो चिक नांगला खोंगसु ओजी ग्याकर की डॉक्टर याला ओजी यांग मिसर की फिलहाल मीनांग मेती सेवा फेकन यांग लिहा फेकन याला मीनांग मेती याकपू इनु शुआ खोंगसु मी याला यांग याकपू की पेचा खोंजे की सेवा पेचा फिला यांग खतर पेचा फिला मीनांग मेती लेहा पेचा फिल यांग यो अति मियाला यांग याकपू रंग या अति या छावा खोंज खोंगसु डॉक्टर की लेहा फेकन याला सराहना का छावा ग्याकर की फिला टनते तंग ग्याकर की नाजा मेकन औजी तो बियाला कोशिश चिकिनु खोंगसु शुआ और जी राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की अवसर ला यंग होई डॉक्टर वाई एस परमार मेडिकल की लापटा नांगला मनखंग तो और जी डॉक्टर याला सम्मानित चुए फिला कार्यक्रम का तंगबा दिनांगला और जी समाज सेवा की संस्था की लाह फेंकें याला डॉक्टर याला सम्मानित चुआ सका यंग नामला की काचा ना और जी क्या कर कि नांग दू मानसून छारवाते ते यंग ते यहाँ मीनांग मेती यांग चावेसा यांग थिरिंगा तो ना सू वही राज्य की मांग छिया यूलिया तो छरवा गेपका छावा वही मौसम विज्ञान की केंद्र सुखा हुआ कि दि सप्ताह ते छरवा मीना मेती गेप चंदू खोंगसू छुआ था दि गाबला यांग आने दिखी डोमा की लुंगन पूजी नियंदा जा

आने दोर्जो वांगमू की लू यनपो गबला था ग्याकर की लन औजी केंद्र सरकार सु तिरिंग नासु लागू चुवेन ग्याकर की यारगेत फीला यंग यूर की यारगेत की फीला बयान अधिनियम का ला नीतोंग नीशु चांगा ग्याकर की जी राम जी की नांगदू मांगदू फुद देखन मूल्य।

ये था स्पीति बोली का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए महाश्वी कार्यक्रम।

महास्वी कार्यक्रम शून्यवेळ सभी श्रोतारा आकाशवाणी शिमलेखा खूब खूब स्वागत। सभी शून्यवेळ के तारे रेडियो दोस्त तारे रेडियो साथी खेमराज शर्मा रा नमस्कार। तो श्रोताओ एक ही आस रखो कि तुम्हें स्वस्थ रह चाह मस्त रह चाह इसे ही आकाशवाणी कार्यक्रम रे प्रोग्राम मारे सुन दे रह चाह। तो श्रोताओ आज का जो फिरेरा टाइम सो यानी मारा 4:50 खा 5:20 तई मारी जो मेरी जो आज रही सो तुम्हार सभी साथी होनी ए आधे घंटे रा टाइम खास होना क्योंकि इतने छोटे छोटे लोकगीत बढ़िया बढ़िया जानकारी और तई खबरसार भी मारे तुम्हारा खिशना होने। तो वह ना एक बढ़िया जा गुलदस्ता प्रोग्राम रे रूपा था जेते बढ़िया बढ़िया फूल मारे प्रोग्राम रे माध्यम का हमारे तुमक है शनावने। तुम्हें चाहे घरे ओसो या के थी खेच कल्याणा दा या के थी रिश्तेदारी दा या के थी सफरा दा मारे जो आज के कार्यक्रम मारी जो जिम्मेवारी होनी जो इस बढ़िया बनाने री से होनी मेरी तारे रेडियो दोस्त खेमराज शर्मा री। तो श्रोतो इसे ही अपना प्यार हमाखे दें दे रहो मारे तुम्हाखे बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम दें दे रहोने लगें दे। तो आज के कार्यक्रम री रूपरेखा रा भी जिक्र कर लूँ मैं मारे अपने शून्य आड़े खे आज दुई विषय पंदे गलबात करनी। पहला विषय असो प्राथमिक उपचार जीवनारा आधार एक दूजा विषय मारा जुओ सो आज का से असो फिट इंडिया अभियान और मारे अपने शून्य आड़े खे खबरसार भी सुनावने बढ़िया बढ़िया लोकगीत भी सुनावने। तो कोई ना जो आज के कार्यक्रम की जो शुरुआत हो सो

से एक बढ़िया जे लोकगीता साथी करूं मैं। तो ऐ सुनो तुम्हें एक लोकगीत, हमें आस रखो कि तुम्हें आज के जो कार्यक्रम आ रही असो आज तुम्हें खूब आनंद होना। तो को ना जो आज के आनंद रही शुरुआत असो से एक बढ़िया जे लोकगीत साथी करूं मैं। तो ऐ सुनो तुम्हें एक लोकगीत।

आने वाले थे विजय शर्मा जी, आज रखू तुम्हें इनारा लोकगीत जरूर बहुत पसंद आया होला। तो एवे बारी सो मारे जो आज का विषय सो मारा प्राथमिक उपचार जीवनारा आधार। श्रोताओ, कसी भी घायल या बीमार आदमी अस्पताल तई पहुँचाने का पहला तीसरी जान बचाने री तई हमें जो कुछ भी करी सकूँ ते देखे हमें प्राथमिक उपचार या चिकित्सा बोलू। तेस बेसुध पड़े दे आदमी री जान बचाने री तई हमें अपने नेड़े तेड़े री कसी भी चीज़ा रा इस्तेमाल करी सकूँ। जनीफा शीगे खा शीगा तेस के आराम मिलो से अस्पताल तई पहुँचो, पर कदी कदी ए जो जीवन बचाने री तई खे कारगर भी हो ए प्रभावशाली भी असो। एमरजेंसी रे टाइम दा क्या करना चाहिए तेथा ज़्यादा जरूरी जानना ए असो कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत इलाज साथी तेस आदमी रा जाना खे खतरा हो सको। जो प्राथमिक चिकित्सा शुरुआती राहत असो एते अवस्था दा दे जाए सको, जिसे कि हृदय गति रुकना, हार्ट अटैक होना, खून बहना, शरीर दा जहरा रा असर होना या किथी जलना फूकना, बेहोश होना, मोच आना, अड्डी चुटना, कसी जानवरा रा खाना या काटो या कुएं कुत्ता वगैरह बिल्ले वगैरह काटी गाओ, दम घुटना हुआ, पानी दा डूबना हुआ, करंट लगना हुआ, बहुत सारी वजह हो सको। जो कुएं आदमी घायल हो जाओ या बीमार पड़ो तो अस्पताल पहुँचाने का पहले इलाज मिलना जो गरु इलाज हो से बहुत जरूरी हो, से फायदेमंद भी हो कदी कदी। ऐसे टाइम हो जो तेस पीड़ित आदमी पांदे तीसरा पूरा देन देना हो। प्राथमिक उपचारारी तई कुछ सलाह असो से हो ऐसो ए जरूरी असो कि मारे घरा दा जो प्राथमिक उपचारारी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, इते कुछ दवाई होना घरे बहुत जरूरी असो जो हमाके घरे सानी साती मिलो, तेस निश्चित स्थाना पांदे से जरूर होनी चाहिए जो टेमा पांदे हमाके मिलो। जो प्राथमिक उपचार असो पहले कामा दा आने वाली दवाई सामान तई कई दूजी चीज़ा बाल बच्चे री पहुँचा खा जरूर दूर रखनी हो। कसी भी रोगी आदमी री जो मदद करने खा पहले अपने आपा खे जरूर पक्का बनाना पड़ो। जरूरी असो जे आदमी आप ही घबराएगा तो तेस दूजे रा क्या इलाज करना, जेती तई हो सको ते तेरी तई क्या दिक्कत आनी क्या खतरे होने ठंडे दिमाग साथी तेस पहले आप ही सोचना पड़ो तो इसे कसी दूजे रा इलाज करी सको। ए जरूर देन रखना हो कि पीड़ित आदमी री जो नब्जस हो से चालने लगेंदी कि नहीं, तीसरा जो से रक्त संचार से जारी रहना चाहिए, ए तीसरे बहते खून देखी रोई हमें पता लग सको। सभी का पहले जरूरी असो शांत रोना, मरीजा के भी सहयोग करना, शांत रोने री तई कसी बेहोश या आधे बेहोश मरीजा के कदी भी बोलो तरल चीजा जो से उस नहीं पौनी हो। तरल चीजा तीसरी सांसारी नली दा डे सको, तीसरा दम घुटी सको, तो ही बेहोश आदमी इलाए रो या जनकाए रो दा हमें तीसरी कोशिश तितनी भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी हो। कोई अनजान मरीज हो तीसरी तलाशी जरूर लौनी हो, पहचान पत्र मिलो या कहें फोन नंबर या तो हमें तेते खासे पता करी सको। सभी घर दा घरेलू प्राथमिक चिकित्सा किट होना बहुत जरूरी असो जो हमक है कदी भी दिक्कत पाँदे कामे आ सको। जनी किटदा हमें दवाई कुछ चीज़ा डॉक्टरी री सलाह खा बगैर भी रखी सकूँ, और कुछ एक चीज़ा जो सो से डॉक्टरी सलाह री ऊनी तेत बहुत जरूरी असो। कुछ चीज़ा असो जिसे बेदन दूर करने री दवाई हुई, बुखार री दवाई हुई, और जे गाँव हो जाओ तो तीना साफ करने तई खे डेटॉल हुआ, सेवलॉन हुआ, टिंचर हुआ, बिटाडीन वगैरह जे किथी बोए जाओ से हमें अपिकाए होना बहुत जरूरी असो। दस्त रोकने की दवाई हुई, ओ आर एस सारे पैकेट होए बाल बच्चे के, या जे कि थी यो माऊ खाएगा हो या रिंगल वगैरह खाएगा हो तो ते तेरी तई खे जो सो क्रीम हुई या कोई दवाई से हमें अपिकाए रखी सकूँ। थर्मामीटर हुआ, चिपकाने वाली टेप हुई, पट्टियाँ हुई, कैंची हुई, बर्नॉल जिसे फूकने खा, कैंची, टॉर्च,

बुरा नहीं मानना मेरी बातों रा यो गाने आड़े थे यशवंत सिंह आजाद जी। आस रखो तुम्हारे नर लोक गीत जरूर पसंद आया होला। एबे बारी सो मारे खबर सारा री। केंद्र सरकारे आज्या खा लागू ओए विकसित भारत ग्रामीण विकास अधिनियम 2025। विकसित भारत जी राम जी रे बनिस्फत बड़ी श्रम दरा अधिसूचित की। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना रे मुताबिक सभी राज्य तो ही केंद्र शासित प्रदेशा दा श्रम दरा दा बढ़त की गई। पहली बारी हर दिना 300 रुपये री अंतरिम आधार मजदूरी दर लागू की गई। इस अधिनियम रे तहत अधिसूचित कोई भी श्रम दर 300 रुपये खा कम नहीं होनी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिहाड़ा सो इस मौके पांदे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डे स्वास्थ्य जगतारे लोका खे तिनारे अटूट समर्पणारी तेई बधाई दीती। एक वीडियो संदेशा था नड्डे देश भरारे डॉक्टरारी बढ़िया कामकाज तई जनमानसारी तई तिनारी सेवारी तारीफ की। तिने लोकारी तकलीफा दूर करने जान बचाने री तई मरीजारी देखभाला रे उच्चे मानदंड बनाए रखने री तई तिनारे अथक प्रयासा खे याद किया। तिने उम्मीद जताई कि डॉक्टरारा निस्वार्थ समर्पण तो ही मजबूती देशा खे प्रेरित कर दी रोनी तो ही एक स्वस्थ भारत बनाने री साझी कोशिशा खे पक्का करना। राष्ट्रीय चिकित्सा दड़े रे मौके पांदे डॉक्टर वायस परिवार मेडिकल कॉलेज तो ही अस्पताल नहाना रे डॉक्टरारे सम्माना दा एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेशा दा मॉनसून पूरी तरह बनी गुआ। आज दोथिया का ही राज्य रे ज्यादातर इलाके दा बरखा होने लगी दी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमले रे निदेशित शोभित कटियारे बताया कि अगले एक ही हफ्ते तई मॉनसून आरे बेहद सक्रिय रोने री संभावना ओसो। तिने बोला कि इस बार प्रदेशा दा मॉनसून तय टैमा खा करीब 5 दिन री देरी खा पहुंचा पर अगले एक ही हफ्ते तई इते चालू रोने री आसोसो। शोभित कटियारे बताया कि 2 तई 3 जुलाई खे सिरमौर शिमला मंडी तई कांगड़ा जिला दा भारी बरखारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो यो थे मारे कुछ खबरसार। ए बेपारी असो मारे कुछ आज का जो मारा दूजा विषय असो से असो फिट इंडिया अभियान। फिट इंडिया अभियान एक मजबूत तई तरक्कीशील भारतारी जरूरत असो। ए भारत सरकारारी एक खास अभियान सो जनीरी मदता खा लोका खे अपने स्वास्थ्य सेथीरे प्रति जागरूक करना सो। भारत सरकार एक इस अभियान खे स्वच्छ भारत अभियानारी तर्जा पांदे आगड़े बढ़ावना चाहो यानी इस अभियान खा भी जन आंदोलन रूप देना चाहो। ए अधिनियम तकरीबन 4 साल तई चलना पहले साल

महास्वी कार्यक्रम अभी आपने सुना, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। लीजिए पेश है किन्नौरी कार्यक्रम।

किनोरिंग भाई सही नमस्कार जू आकाशवाणी शिमला केंद्र तो जू प्रोग्राम कल्पारंग कुलो रिले केंद्र उजली रिले हचो भैसे सुदेश नेगी हाजिर तो किनोरिंग प्रोग्राम लिखशीस दोग भैसे राजी खुशी तो चाहे ग आशालन तो किना चोई की राजी खुशी नीतीज तोरे माता हन कशो किनोरिंग रिमा पश्मिक सिया अरलानिक सिया कशो फैलोता तो हूं भैसे गा दोग वाल ब्यास नीतीज नियो दोग साथी किनोरिंग प्रोग्रामो दियार म्या किना जो प्रोग्राम ली रोंचो नीतीज गली दो ख्याचता किनानु मनोरंजन रंग दम दम जानकारी गा लिखशीस गली हाजिर हाजिक नियो वैसे हलिया तोरो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस तूनियो तोरो इस जुलाई म्या पूरा तो तेशु कुमो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मोने अमदे जू दियार ख्याचता चोई डॉक्टरेनु प्रति सम्मान रंग आदर व्यक्तन्नु अवसर नियो दोगा ख्याचता रतिंग रंग लाए कशानु सेहतु रक्षा लन्नु दिशिस नीज नियो वैसे डॉक्टरे श्री टोदनु इलाजी मलंस नियो दोगा बल्कि कशानु स्वस्थ जीवन नीमु ओमली जंगचित नियो तेरंगली कशांगा या कशानु पेरंग कुमो हाथ ली टोशिमा दोग चोयकु ओम्स कशा डॉक्टरेनु सहारा उन्सनियो दोगानु ख्याचता ज्ञान अनुभव रंग सेवा भाव ख्याचता लाखों मीगनु नया जीवन रंजनियो वैसे भारत कुमो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस महान चिकित्सक ख्याचता समाजसेवी ख्याचता डॉक्टर विधान चंद्र रायो स्मृति उदयन मुनियासनियो अनेनु जन्म रंग सीमित त्यार

सराय बोशांग निशनी जा बोशांग संग हाथली भारतीय नागरिक खात्याओं दंग बैंक या डाकखानों बचत खाता नी तो जो योजना रंग जुड़न सुकैसनी हो जोर ख्याज था तेते कम उमरों में जुड़े तो होते ही कम मासिक अंशदान रनिम ग्यासनी हो जो योजनों कुमो निजा बोशांग संग लगातार दुक योगदान रनिम ग्यास मदे जो योजनाओं स्वयकुतेक विशेषता होए लिदो की शुम निजा बोशांग पूरा हचमू निपी मी पंग दुक चुनियाशित जो विकल्पु अनुसारी 1,000 20,000 शुमाजार यानी के 9,000 रुपया स्तंग गारंटी से पेंशन पोर्यातोय वैसी ख्याचता अगर ठत कारणवंश पेंशन दारकु दार ख्याचता ने मदकची मा तंग मादोक दो जीवन साथी पंग पेंशनु लाभ पोर्यातोय दो युम योजनाओं शर्तेनु अनुसारी दोक पूरा राशि दोक नामांकित मी पंग पोर्यातोय जूस तो पूरा पेरंग आर्थिक सुरक्षा पुरातोनियो जू योजना कुमो रुपया दोक हर गोलो हर शुम बोशंग गोलो या टू गोलो आधार देन बैंक खाताओ रुपया आनी कटैतोनियो समय देन किस जमा जारी ली मदक चोनियो वैसे ही तो रुकतु समयों ख्याचता संयुक्त परिवार घोटिया दो भी होनियो जीवाणु खर्चा का लगातार बोध्या दोबियो देरंग मनाओ भविष्य तंगेस ओमची बचत लनी जरूरी हचिसनी हो अटल पेंशन योजना हुजुई दिशा कुमो कमंगला नोनी हो जिगित जिगित त्यारोचु बचत भविष्य कुमो तेक सुरक्षा हचिम सोकेसनी हो तोरोकचु समझदारी नसोमचु सहारा हचितनी हो वैसे ही दो तंगे स्कीना पात्र निमा अटल पेंशन योजना बारे जानकारी उनिम ग्यामिक आई मनाओ भविष्य पंग सुरक्षित जुर्यामु कोचंग कदम बड़े ग्यामनियो ई बरंकशा मनाओ वर्तमानु जरूरतनु पूरा लनु तंगेस होता व्यस्त हचित की भविष्य बारे सुनसेनु समय मतवासनियो मगर सच बतंगता हुजी दू की जीवाणु हर पड़ाओ तंगेस ओम सीधोक तैयारी लनी समझदारी निजनी हो अटल पेंशन योजना हो जाई संदेश केस की जिगित जिगित बचत भविष्य पंग सुरक्षित जुर्याम सुकैजरी हो वैसे देशु कुमो मुलुक संख्या देन होली मेगा की थी सरकारी या निजी संस्थाओं कुमो स्थायी नौकरी का मलंसनी हो किसाने दयाड़ी दयारे जिगित दुकाने घरेलू कामगारे हुए लाखों में अनु मेहनत रंग पेरंग शोक पेरंग आने का पालेनी हो मगर उमर बोधी हजमुनी भी कमंगलानी महाजनी हुए समय कुमो नियमित पेंशन पोरन्ना तंगमा दोग जीवन आसन हचितनी हो अटल पेंशन योजनाओं चेकुते एक संदेश हुजी दू की भविष्य जोरीपंग तोरोकतु जिगिज बचत सी कम लानी सोगैसरी हो जो योजना कशानु बचतु आदत ली सीख्या चितनी हो ऐ आर्थिक अनुशासन ली सीख्या चितनी हो वैसे जुदतो के सांदा जानकारी अटल पेंशन योजना बारे कचता तेमा ऐ गीथंग ली रोंची रोंची जू गीथंग

वैसे ही किनास की थंग धरों जिसे कलाकार तो के चंद्र जमुना नेगी जी कच ते वैसे सांदा प्रदेशु खबर सारे लिखाशित तो जुली किना नु रिंग तो प्रदेश भाजपा महामंत्री रंग राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार स्लोशित कांग्रेस सरकारु कार्यकाल कुमो हिमाचल प्रदेशु कुमो भ्रष्टाचार प्रशासनिक अराजकता रंग लोकतांत्रिक संस्था कानु दुरुपयोग दौर चला शिमला जिलो जुपल क्षेत्रो भाजपा जिला महासु प्रशिक्षण महाअभियानु समापन सत्रो संबोधित लानो अनेशु बतंग लोशीत आई कांग्रेस सरकार विकासु हर मोर्चा देन विफल हद दक्षिशीद आई किसान बागवान रंग युवा का चोई वर्क गु सरकारु नीतिगंधंज परेशान रिंगो लोशीत आई प्रदेशु लो आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़े दुई मगर सरकार जनहितु मुद्दा गनु समाधान लनु बजाय सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध रंग सत्ता बोचयामु कमंग लनोय सिकंदर कुमार भाजपा कार्यकर्ता गंदंग कांग्रेस सरकारु जन विरोधी नीतिगा रंग भ्रष्टाचारु देशंग देशानो बीबी जनता ओम्स उजागर लनु आह्वानली लैशीत आई विश्वास दिले जते आशित की प्रदेशु जनता निशाचार स्थायीसु विधानसभा चुनाव कुमो कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीकास करारा जुआ प्रांतिश आई हिमाचल कुमो सुशासन रंग विकासु न्यूक सरकार हचोय आई खबर तो राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी श्रोषित की किनोरिंग जिला कल्पा हासल ईत मिनी सचिव

वाल्यो निर्वाण हाचोय अनेस कल्पा पंचायत कुमु नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि गारंग एके ईद बैठक लंशित जगत सिंह नेगी जी स्लोशित की मिनी सचिवालय हचिमा मी गानु ईदी जगोदेन प्रशासनिक रंग राजस्व कमंगा निपट्यामु सुविधा हचोय अने कल्पा पुलिस चौकियों नेरंगु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माणली लंतीश आई खबर तो ख्याचता जो केंद्रीय कृषि रंग किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानें दंग मटेंग उपजाऊ शक्ति जुर्यामु तांगेस रिमानु कुमो उर्वरक रंग कीटनाशकेनु संतुलित उपयोग लन्नु आग्रेली लाइनशीत अनेस किसानेनु जैविक खेती अपनेयामु सलारंशीत जोर कृषि क्षेत्रेनु विकासु बिना विकसित भारतु सपना पूरा माच शिवराज सिंह चौहान लोशित की केंद्र सरकार मोबाइल ऐप विकसित लनु देन कमंगलानोय जू मट्यांग रंग दौर जरूरी उर्वरकेनु मात्राओ बारे जानकारी प्रदान लंतीश वैसे जुदातो के प्रदेशु खास खास खबर सारे उन भी मिग लिखा मुदोनियो युम सुबेरंग आई गीथंग ली रोंची रोंची जू गीथंग

अभी आप सुन रहे थे किन्नौरी बोली का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोकगीत।

ये लोकगीत आपने सुना जियालाल ठाकुर की आवाज़ में। लीजिए सुनिए, सरिता भारद्वाज का गाया ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। बिणिबिप 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स और FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। प्रादेशिक समाचार थोड़ी देर में प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गाँव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और सुबह से ही राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हो रही है। भारी वर्षा से कुछ स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे कई स्थानों पर सड़क मार्ग अवरुद्ध रहे। उधर चंबा जिला की जनजातीय पांगी घाटी में घिसल नाले में बादल फटने से साच सैचू संपर्क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। बादल फटने के कारण आई बाढ़ से सड़क का बड़ा हिस्सा तेज बहाव में बह गया। हालांकि लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग बहाली का कार्य किया जा रहा है। इधर लाहौल स्पीति जिले की रानिका पंचायत के पढ़ाक गांव में बादल फटने और भारी बारिश के चलते किसानों की गोभी सहित अन्य फसलें मलबे में दबकर पूरी तरह नष्ट हो गईं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि आगामी एक सप्ताह तक मॉनसून के बेहद सक्रिय रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 2 और 3 जुलाई को सिरमौर, शिमला, मंडी और कांगड़ा जिले में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: जो है हमारा मानसून जो है 30 जून को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। आज 1 जुलाई को मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर चुका है। इस साल लगभग 5 दिनों लेट मानसून हमारे यहाँ पे पहुंचा है। मानसून जो है पूरे प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाला है, जिसका असर जो है हमें लगभग सभी जिलों में रुक रुक के देखने को मिलता रहेगा अगले 5 to 7 डेज तक। मुख्यतः हमारा जो कांगड़ा जिला है, शिमला जिला है, उसी के साथ जो मंडी और सिरमौर जिला है, वहाँ पे 2 जुलाई, 3 जुलाई और 5 जुलाई को जो है भारी से अत्यधिक भारी बारिश को ध्यान में रखे हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
0: इस बीच भारी वर्षा से

0: पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी नालों के समीप व संवेदनशील इलाकों में न जाने की सलाह दी है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के पूह गांव में जनसमस्याएं सुनी और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए। बाद में उन्होंने पूह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। जगत सिंह नेगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया ताकि पात्र लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने नव निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी अपने संबंधित क्षेत्रों में पारदर्शिता व निष्पक्षता से विकासात्मक कार्यों को पूरा करने का आह्वान किया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्षों में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ग्रामीण और कम सुविधा वाले इलाकों में हेल्थ केयर, शिक्षा, हुनर विकसित करने, खेती और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच को बढ़ाया है। पेश है ये रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों के अंतर्गत आइए सुनते हैं बिलासपुरी कार्यक्रम।

पूजी गुरु तुम्हारा प्यारा ब्लासपुरी प्रोग्राम लेकने सबने सुनने वाले हो पुन मारा प्यार भरा नमस्कार। ती तुहा खातर प्यारे प्यारे लोग गीत भी लंदुरे मैं तुहानी प्यारी प्यारी गल्ला बातें भी करनिया कने खास खास खबर जो हैं से भी तुहा सुनानिया। तो जी आज का जो दिन ना यानी 1 जुलाई रा दिन ये बड़ा खास दिन ना। आज के दिन जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में भी मनाया जाता। हर साल 1 जुलाई जो मारे देश सच विश्व चिकित्सा त्याड़ा मनाया जाता। ये त्याड़ा महान चिकित्सक कने स्वतंत्रता सेनानी कने पश्चिमी बंगाल रे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय री जयंती कने पुण्यतिथि रे मौके पर मनाया जाता। इत खास त्याड़े जो डॉक्टर जो खास सम्मान देने खातर मनाया जाता। डॉक्टर विधान 14 साल तक बंगाल रे मुख्यमंत्री रहे। साल 1882 च ये पटना च जम्मे थे। इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की थी। इतने बाद से इंग्लैंड पढ़ने खातर चली गए थे। 1961 च तिना जो भारत रत्न भी मिला था। से ब्रिटिश मेडिकल जनरल रे सबसे पहले चिकित्सा सलाहकार थे। चाहे खंग हो जुकाम हो या कोई बड़ी भारी बड़ी बीमारी हो अहाँ जो डॉक्टर री हमेशा ही जो से जरूरत रहती इन्हों के बिना सेहत री संभाल ही नहीं करी होंगी आई। डॉक्टर रा काम बड़ा संभली ने करने वाला होंदा तिना जो लंबे टाइम तक काम करना पौंदा। कई बार तो वहाँ पे छुट्टी के बाद भी कई कई घंटे जो आ तिना अपनी ड्यूटी देनी पौंदी यानी अपने मरीजों जो देखने खातर से आज वो अपनी सेवा देंदे रहेंदे। रात दिन मरीजों की देखभाल करते रहेंदे। अहीं देखिया करोना रे टाइम जो था से अपू चीए जो रिश्तेदार थे या टबरा रे थे से एक दूजे नहीं पछाणते थे एक दूजे अगे जाने ते डर

सकते थे, ना गलांदे थे ना बोलते थे, दूरी एक बनावरी थी। पर तेड़े टाइमा भी डॉक्टर जो थे तिनों ना तो छुट्टियां थी, कने हमेशा से ओरारी सहायता करने खातर तैयार रहते थे। डॉक्टर जो आसे सिर्फ माणुआ जो ठीक ही नहीं करते, बल्कि तिना जो हमेशा विश्वास रहंदा भई आहां जो कुछ नहीं होना, क्योंकि अहें जो इसे अपनी बीमारी डॉक्टर अगे दसनी, कने डॉक्टर जो आ तीसरा फटाफट इलाज जो आसे कर देना। आ सबनी जो चाहिंदा भई आहां जो भी डॉक्टर जी सलाह जो इसे बिल्कुल मननी चाहिंदी, कने जी आहां जो दसुरा वहाँ तीएँ दवाइयाँ खानी चाहिए, तीएँ यहाँ जो परहेज करने चाहिए, कने हमेशा जो आ से डॉक्टर री जो से इज्जत भी करनी चाहिए।

और जो अपने घरा नेड़े तेड़े हुआ ती सो जरूर कटना चाहिंदा, क्योंकि आजकल कीड़े कंडूरा बड़पारी डर हुआ। राती जो सोंदी बार जो आसे अपना लेप अपना जो चादरा चूदरा या सब कुछ झाड़ी कने सोना चाहिंदा, क्योंकि देखो जी कई बार देखा गया पे इतने च कई कुछ जो आसे लुकी गुराऊँ। खाने रा जो आसे बड़पारी ख्याल रखना चाहिंदा, आज गलारे मौसमा च जो आ से बड़ भारी ज़्यादा नहीं खाना चाहिंदा, पेट टच भुखरे जाओ इतना कर खाना चाहिंदा ताकि जो आ से पचने जो भी ठीक रहो। आजकल थोड़ी जी चीज़ भी जे बाहर रख रही है फ्रिजा ते बाहर तगिया गर्मिया च रख रही है तो देखना उफान आई ग्रां ते सच, तां जो ध्यान रखना चाहिंदा भी घट बनाना चाहिंदा, जितना बनाए रहो तितना ही खाना चाहिंदा। तो जी जे सेहता री संभाल रखे तो सारे मौसम अहां जो लगने बढ़िया, कने जे किती बीमार होई गए तो फिर अहें तिस पर पैसे भी खर्च करते रहना, कने रूह भी नहीं ठीक रहनी, कुछ भी करने हो जो भी नहीं हरा करना। तो जी इजाजत लें तो हाँ ते प्रोग्रामर होई गुरा टाइम दो, इजाजत नमस्कार।

ये था बिलासपुरी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। लीजिए पेश हैं कुल्लूवी बोली का कार्यक्रम।

मीडियम वेव और एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर इस आकाशवाणी शिमला संज की 6:35 मीटर वक्त हुआ सुना तुसी अपना कुल्लवी कार्यक्रम।

सबने पहले कार्यक्रम सुनने सभी श्रोतावे डॉक्टर सुभाष मोहन स्नेही तरफ नमस्कार। तो देखा आज के कार्यक्रम ना सा नवी ताजी लाणी और तो पता से कि आज आजना वन महोत्सव जरा ए सप्ताह सी बड़ी मेरी शुरुआत भी हुई हुई और असरी देशे प्रदेश सरकारें जितनी भी कल्याणकारी योजने आम तमाम मन बिठड़ी है कल्याण करने की खातिर तिना वे सहूलियत देने की खातिर शुरू करी सी उन्हें बारे में भी ऐसे बखान करना। आज के एक कार्यक्रम में सभी ने पहले से शुरुआत करनी शुभली लोकस्तुति सती और मानसून नारा क्रम भी अखे जंडे से पहाड़ा दी राजधानी शिमला सी बड़ी अखे जोरा शोरन शुरू हुई गया सी और दूसरे इलाके ने भी जड़े अपने गौरव इलाके सी बड़ी तखे भी ए मानसून नारा क्रम छिकन छिके शुरू हुई जाना सी जो के इबरे तई नहीं हुआ थी। तो उन्हें जंडे आजकल के एक खास रोज सी मानसून आ रही तो पता सी कि पास ले दुख दर्द असे इबरे तई भूल नहीं आती 2023 जंडी बाड़े वजन बारिश अचानक बरसाते वजन जंडा नुकसान हुआ थी और जो तई आम तमाम मानू बिटरी जेवा जकेर दिला गए सी

इंतजाम केरी सकी। सरकारा भी सहयोग करना, आम तमाम मानू बेटड़ी समाजिक संस्था भी सहयोग करना, परंतु जे अपना जीव ठीक नहीं आती, अपना शरीर ठीक नहीं आती, तो कुणी वे कुणी री खातिर असे त्याग करना लाऊद सी, अपनी जाने की कुर्बानी देने लाई सी, एंड काम नहीं करना थी। तो आजकल के रोजाना डायमोंड सुनारा क्रम शुरू हुई गो सी, तो तुसे सूझबूझन साथी सुरक्षित स्थान आंदे असरे गौर सी, नाड़ा नोई नाड़े नज़दीक नहीं रोना थी, सुरक्षित स्थान तुसे अपना डेरा बांधना सी। आज के ही कार्यक्रम में शुरुआत से शुभ लिए एक स्तुति केने लाई सी, पेश करने आड़े सर कलाकार सी, सबने पहले बाल कृष्ण होरी तलिया, सबने पहले इनरी आवाज ने शुभ ली लोक स्तुत्र मजा, बाकी गलबात रा सिलसिला असरा लगातार जाहिर होना, तलिया सबने पहले शुभ ली लोक स्तुत्र मजा।

देखो जी, यह थी शुभली लोक स्तुति, पेश की नेड़े सर्कल कार थी बालकृष्ण होरी। जरूर तुसे शुभली लोक स्तुति रे मजा लो। उन्हें बीच से गल करने की आज एक जुलाई रा, एक जुलाई सी, और एक जुलाई यानी कि पहली जुलाई रा एक अपना महत्व सी पूरे भारतवर्ष न, जेंडा अपना भारतवर्ष सी बड़ी मारे यही भारतवर्ष न हर वर्ष एक जुलाई और 7 जुलाई ताई एक वन महोत्सव मनाने रा एक आयोजन हो सी बड़ी, और वहीं बे वार्षिक वृक्षारोपण त्योहारे रूपन एक खास रोजा मनासी। एक कार्यक्रम रा मुख्य उद्देश्य आम तमाम जने मानो बैठली सी बड़ी पेड़ पौधे रे प्रति ए सब रे जागरूक किरने जागरूक ए जागरूकता पंदे, और वृक्षारोपण पंदे बढ़ावा देने री खातिर ये मन वन महोत्सव सप्ताह मनाने रा ए त्यौहार पूरे भारतवर्ष ने मनाना लाउदा सी। असरे आस पड़ोसन दे तो सब पता सी वन कटाई रोकने री खातिर और अपने देशा री खातिर और जन असरी हरित क्रांति सी, हरा भरा लूरी अपना इलाका, हरी भरी हरा आवरण पूरा इलाका जन बोला सी कि भाई हरियाली ने भरुआ दलोड़ी ए बढ़ावा देने री खातिर वन महोत्सव सप्ताह मनाने रा एक उद्देश्य बनूंदा सी। एंड था वन महोत्सव मनाने की शुरुआत अपने भारतवर्ष ने 1950 ने शुरू हुई गई थी, और तेई वक्त रे जेंडे असरे कृषि और खाद्य मंत्री थी कन्हैया लाल मणिक मुंशी जी, तिने जुलाई रे जेंडा पहला सप्ताह मारे भारतवर्ष ने मानसून मानसून रे जेंडा आगमन भी आजकल के वक्त ने हुआ था हो आसी बाड़ी, और यही आजकल के रोजन अपनी जमीन भी अखे नमी हेरन रहे तो मेड़ा सी बाड़ी, और उन्हें सहयोगन जेंडे नवे असे पौध रोपने हो सी बड़ी नवे पौधे लाने सी। यही हफ्ते न यही महीने न तिन्हरे जीवित रहने री ज़्यादा संभावना बढ़ी जा सी। ए मौसम बहुत ही शुभला मौसम सी, और आजकल के मानसून रे रोज़ तुसे वृक्षारोपण जरूर करना एंड असरी गुजारिश रहो सी। और उन्हें साथ साथ ही जेंडा अपना खास तौर ने अपना कुड़ू घर सी बड़ी अख तो देखा बाग बगीचड़ू लागे ने सी, और उन्हें साथ साथ ही जैसे कैल कीड़ो रे जेंडे खरशु बानर रे जेंडे पेड़ लाई सी बाड़ी तो होर भी शोभला असरा इलाका लगना, और पूरा इलाका एक हरित क्षेत्र रूप में परिवर्तित हो जाना सी। जेंडे असरे मशहूर इलाके सी जलोड़ी जोत सी बाड़ी ग्यागी जी बी रजेंडा शुभला इलाका सी मनाड़ी रा शुभला इलाका सी, तो खे आज के वक्त ने भी जेंडे पर्यटक भी ओके एंदे लागे सी बाड़ी उई उई ने पत्थर भी यही वजह सी कि भाई अपना इलाका हरा भरा और शुभला हुई रे वजन पर्यटक दूरा दूरा देशा प्रदेश ओके एंदे लागे सी। असरा एक शुभला लोकगीत भी आज के वक्त ने बड़ा जोर शोर चालू सी अपने समाज ने कि एंडे बोल सी कि भाई सेवरा बगीचड़ू बण कीड़ूरा लाणा, बावड़ी झूरिए बण कीड़ूरा लाणा, एंडा शुभला लोकगीत आज के वक्त ने स्कूल

झंडे असली कोई जागरूकता शिविर हो सी बाड़ी तो के यही लोग की तरह बखान हो सी तसे मिली जुलिया अपना झंडे बाग बगीचू रे झंडे ऐसे काम सी ऐ शुभले तरीके ने किरने और हरित क्रांति रे क्षेत्र में से आगू बढ़ना और अपने झंडा जोर शोर वन कटाव होता लगा सी आगे न अपने जंगल बचाने ताकि असरी हरियाली पांदे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ी सका थी। देखा तसरी तमाम श्रोतन गुजारिश रहनी तुसे मिली जुलिया अपना ए इलाका शुभला बनाने की खातिर ए वन महोत्सव सप्ताह शुभले तरीके ने मनाना और असरी आशा पूरे आम तमाम परिवार तरफ न आकाशवाणी परिवार तरफ न भी तुसे न गुजारिश सी कि तुसे वृक्षारोपण जरूर करना यही सप्ताह न और अपना हिमाचल प्रदेश से शुभला सुंदर और हरा भरा बनाना। तो देखा महाराज गलबात सिलसिला ओके चलता रहना अस एक शुभला लोगी तुस बिछड़ाना सी कि झंडे असरे बौन बूटा रहा परिधान सी हरित क्रांति की झंडी ऐसी गल केरी उन्हें सर सर झंडा असरा बाणा सी पट्टू चूड़ूरा बाणा एंडा शुभला लोकगीत असें तुस वे भी सुनाना तलिया धर्मेंद्र शर्मा और कृष्णा ठाकुर आवाज़ ऐसा शुभली लोक स्तुति मज़ा आज के ही कार्यक्रम में।

केयर, शिक्षा हुनर विकसित करने और खेती और कल्याणकारी योजना पजाने नवे ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से होकर बढ़ावा मिलू सी। तो देखा ए थी आज के कार्यक्रम ने नाव भी ताजी और इतना बीच अपना देश भारतवर्ष एक संवैधानिक प्रणाली तोड़ने वाला देश सी बाड़ी ओके एक कल्याणकारी सरकार भी बनी सी और सरकार से योगन आज पूरे देशन एक मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम चालू सी। यही कार्यक्रम में सहयोगन भारत सरकार एक जना मुख्य कार्यक्रम ए बनू सी टीकाकरण अभियान 25 दिसंबर 2014 में शुरू हुई थी ए शोभली योजना सहयोग योजना रे सहयोगन जंडे बच्चे और महिला वर्ग वे 100% टीकाकरण सुविधा सुनिश्चित करने रा ए कार्यक्रम अखे निर्धारित कर दसी। टीकाकरण कवरेज जैसे गल करी कि बच्चे और गर्भवती जंडी बेटली सी बाड़ी तीन तई पहुँच बढ़ाने और टीकाकरण जंडे कोई आदमी अगर छूटे दे होसी बाड़ी तीन सभी वे आंशिक टीके लाने रा प्रावधान अखे निर्धारित कर दसी। और तुसे पता होना लड़ी साता रंग रिजेंडी जानलेवा बीमारी असरे नौने आला न हो सी बाड़ी बीमारी ना तुसे पता होना लड़ी डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, तपेदे, खसरा और हेपेटाइटिस बी एंडी और जापानी इन्फ्लुएंस फ्लाइटिस और हिमोफिल्स इन्फ्लुएंजा टाइप रिजेंडे बीमारी सी इना बीमारी ना इना टीका करने से योगन इलाज हो सी बड़ी। तो तुसे सभी ए इन मिशन इंद्रधनुष योजना का पूरा पूरा फायदा लेना ताकि असरा पूरा भारतवर्ष आम तमाम परिवार सरे सुरक्षित और स्वस्थ बनिया रह सका सी। तो देखा कार्यक्रम में आखिर ना एक हो शुभला लोग सुनना पेश करने वाले असरे कलाकार सी भक्ति देवी और कहने के रे अपने कलाकार शुभला इन लोकगीता गंठ लहरा कौम किरा और आम तमाम मन बेटी दिला पांदे राज किरा तल्या शुभली स्तुति ना भक्ति देवी री आवाज़।

देखो जी, ऐ थी शुभली स्तुति पेश के नेड़े से कलाकार थी भक्ति देवी होरी। उन्हें सती आज के कुल्लवी कार्यक्रम का वक्त हुआ। डॉक्टर सुभाष मोहन से नहीं विदे इजाजत, नमस्कार।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा
1: नमस्कार।
0: किसान भाइयों, आज के अंक में मैं हूँ हेमलता शर्मा।
1: और मैं हरी सिंह चंदेल।
0: क्या हाल चाल है हरी जी आपके?
1: हेमलता जी, मैं तो ठीक हूँ, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो किसान और बागवान भाई बहन है वो भी स्वस्थ होंगे और आजकल अपने कृषि और बागवानी के कार्य में जो है व्यस्त होंगे। हेमलता जी, जैसे कि बरसात का मौसम जो है शुरू हो चुका है, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जो किसान भाई है वो अपने खेतों में जल निकासी का जो है उचित प्रबंध करके रखें,
0: जी
1: क्योंकि वर्षा का पानी खड़ा होने से फसलों में कई तरह के रोग लग जाते हैं और खरपतवार भी जो है काफी बढ़ जाती है,
0: जी
1: तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है।
0: ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि यदि पानी खड़ा रहा तो जड़ें सड़ जाएगी और पौधा खत्म हो जाएगा, तो पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें, चाहे घर की बात है चाहे आपके खेतों की बात है। यदि पत्तियां, कई बार क्या होता है घर में पीछे से नाली बनी होती है, पत्तियां अटक जाती है तो पानी अंदर भी आ जाता है, तो हमेशा ध्यान रखें, अब बार बार वहां जाते रहें, ध्यान रखते रहें कि कहीं पानी तो नहीं रुक रहा है, उसकी निकासी का उचित प्रबंध करें और खेतों में भी डंडे को लेके साथ जाएं ताकि वो जो पानी होता है वो घास में लगा हुआ ताकि आप उससे भीगे ना, और पशुधन का भी ध्यान रखें, अच्छे से उसमें छैन छून बिछा के रखें पशुओं को भी, ताकि उनको जो चीड़न वगैरह ना लगे, और पानी भी साफ सुथरा पिए, उबाल कर छान कर पिए क्योंकि पानी गंदा आ रहा है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। तो किसान भाइयों, हम आपको जानकारियां लेकर आए हैं, पहले बात कर लेते हैं काम की बातों में। आज का विषय है फूलों के हानिकारक सूत्रकृमि व उनकी रोकथाम, साथ में मनोरंजन करवाएंगे प्यारे से लोकगीत के साथ।
1: जी, और जानकारीपूर्ण बातचीत का विषय रहेगा कि वनों को आग से कैसे बचाएं। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देंगे धर्मचंद शर्मा, और उनसे बातचीत करेंगी निशा शर्मा।
0: जी तो किसान भाइयों, आप जानते हैं कि फूल जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा साथ देते हैं, किसी भी तरह का कोई भी उत्सव हो तो फूलों से सजाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं फूलों के हानिकारक सूत्रकृमि व उनकी रोकथाम के बारे में। नीमाटोड या सूत्रकृमि धागानुमा सूक्ष्म कृमि की तरह जीव होते हैं जो पानी या मिट्टी में पेड़ पौधों और प्राणियों में परजीवी के तौर पर रहते हैं। इसका शरीर लंबा, बेलनाकार, खंडहीन और दोनों सिरों से पतला होता है। मूल रूप से ये जलीय जंतु है और ये किसी भी प्रकार के नम या गीले स्थान से मिल सकते हैं। इनकी अनेक जातियां होती है जो कई प्रकार के पौधों और प्राणियों पर परजीवी के रूप में रहती है।
1: जी, किसान भाइयों, परजीवी जातियां पौधों के नाशक जीवों एवं पशुधन के परजीवी के रूप में कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सूत्रकृमियों की कुछ जातियां सूक्ष्म भक्षी और अन्य दूसरी जातियां मृत भक्षी, या अनेक जातियां शाक भक्षी या पाद भक्षी होती है, जो अपना पोषण सीधे जो है पौधों से प्राप्त करती है। सूत्रकृमि लगभग सभी फसलों के पौधों पर आक्रमण करते हैं, परंतु अभी तक उनकी पौधों पर रहने वाली जाति का बहुत ही कम ज्ञान हो पाया है, जो विभिन्न प्रकार की फसलों, सब्जियों, फूलों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की जलवायु तथा भौगोलिक परिस्थितियाँ फूल उत्पादन के लिए अनुकूल होती है। जब मैदानी इलाकों में गर्म जलवायु फूलों के अनुकूल नहीं होती, तब पर्वतीय क्षेत्रों में उगाए जाने वाले फूलों को अच्छी आमदन जो है यहाँ के बागवान भाई जो है उठा सकते हैं।
0: जी,
1: इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में पुष्प उत्पादन व्यवसाय काफी लाभदायक जो है सिद्ध हो रहा है।
0: जी,
1: कई प्रकार की सूत्रकृमि प्रजातियां जो है फूलों की फसलों को काफी भारी नुकसान पहुंचाती है।
0: जी,
1: ये मुख्यतः फूल जो है उनमें आते हैं गुलाब, ग्लेडियोस, कार्नेशन, ट्यूलिप, लिलियम, रजनीगंधा, चमेली और गुलदाउदी। सबसे पहले बात करें ग्लेडियोस की, तो निमाटोड के प्रकोप से पत्तियां जो है मुरझा जाती है, स्पाइक छोटा रह जाता है और

0: पौधे जो है बौने रह जाते हैं और जमीन के अंदर बल्ब भी जो है वो सड़ जाता है।
1: जी किसान भाई, यदि कार्नेशन की बात की जाए तो जड़गांठ सूत्रकृमि मुख्य रूप से कार्नेशन की फसल को अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं, जिससे पौधा छोटा रह जाता है और खेत में इसका प्रकोप खंडों में देखा जा सकता है। जड़ खासतौर पर अधिक प्रभावित होती है। यदि हम गुलाब की बात करें तो नीमाटोड से गुलाब की फसल को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। इसका मुख्य कारण प्रतिरोधी मूलवृंत हो सकता है, क्योंकि इस पर चढ़ाई जाने वाली कलमों पर नीमाटोड का असर नहीं होता है। पुराने गुलाब के खेतों से जड़ों पर गांठें बन जाती है, जो आगे चलकर पौधों की बढ़ोतरी कम कर देती है। यदि हम रजनीगंधा की बात करें तो तना सड़न इसमें मुख्य रूप से देखने को आता है। पौधा कमजोर हो जाता है और निचली पत्तियां सूख कर गिरने लग जाती है। सूत्रकृमि प्रकोप द्वारा फूल रहित डंडियां, नंगी शाखाएं और पौध छोटे आकार का हो जाता है। यदि हम नियंत्रण और प्रबंधन की बात करें तो सूत्रकृमि को पौधों मिट्टी में कम करके या उनके एक जगह से दूसरी जगह पर फैलने से रोककर इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। कई प्रकार के नियंत्रण विधियों को लागू करके एकीकृत विधि से सूत्रकृमि पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
0: जी बात करें इनके प्रबंधन की, वैसे तो सूत्रकृमियों से पूरी तरह छुटकारा पाना मुश्किल है, परंतु उचित प्रबंधन से इनकी संख्या को नियंत्रित जो है किया जा सकता है। सबसे पहले बात करें जैविक उपाय की, तो आपने गेंदा लगाना है। खेत या बागीचे में गेंदे के फूल उगाने में सूत्रकृमि दूर रहते हैं। फसल खत्म होने के बाद गेंदे के पौधे फूलों को मिट्टी में मिला दें, यह प्राकृतिक रूप से सूत्रकृमियों को नष्ट कर देता है। इसके अलावा आप नीम की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी तैयार करते समय नीम या करंज की खली 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलाने से बहुत ही लाभ होता है।
1: किसान भाई, यदि कर्षण विधि की बात की जाए तो इस माध्यम से हम नेमिटोड का खेत में बढ़ती हुई आबादी को कम करके फसल को बचा सकते हैं, जो मुख्य रूप से ट्रैम्प क्रॉप फोल्डिंग या खेत को खाली अथवा गहरी जुताई से मुमकिन है। खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई के बाद 10 से 15 दिन तक खुला छोड़ने से भी सूत्रकृमि नष्ट हो जाते हैं।
0: इसके अलावा किसान भाई आप कृषि संबंधी उपाय भी अपना सकते हैं, जैसे कि मिट्टी का सौरकरण। गर्मियों के महीनों में मिट्टी को अच्छी तरह पानी देकर 4 से 6 सप्ताह के लिए पारदर्शी प्लास्टिक से ढक दें। तेज धूप से सूत्रकृमि और उसके अंडे जो है नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आप फसल चक्र अपना सकते हैं। एक ही जगह बार बार फूल ना उगाएं, बीच में कम संवेदनशील फसलें जैसे गेहूं या मक्का भी उगाएं।
1: किसान भैया, बात कर लेते हैं रासायनिक उपाय की, जिसमें है कार्बोफ्यूरान। मिट्टी में कार्बोफ्यूरान 3 जी लगभग 40 ग्राम प्रति पौधा या 10 किलोग्राम प्रति एकड़ का इस्तेमाल करने से प्रभावी नियंत्रण मिलता है। गर्म पानी का उपचार की बात की जाए तो अगर आप कंद वाले फूल उगा रहे हैं तो रोपण से पहले कंद को लगभग 55 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में 15 से 25 मिनट तक उपचारित करें। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी मिट्टी में कौन से सूत्रकृमि है तो आप अपनी मिट्टी का परीक्षण करवा सकते हैं। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं एकीकृत रोकथाम की। नेमाटोड रहित रूट स्टॉक का प्रयोग करें। नेमाटोड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलने से रोकें। मिट्टी की जांच कराएं, फसल चक्र अपनाएं, खेत में गोबर की खाद, नीम की पत्तियां या खली का प्रयोग अवश्य करें। तो किसान भाइयों, कई बार क्या होता है, फसल जो है अच्छी नहीं होती है, तो यदि आप फसल चक्र अपनाते हैं तो या फेरबदल करते हैं तो फसल की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है।
0: जी इसके अलावा किसान भैया कुछ पौधे सूत्रकृमियों के लिए हानिकारक माने जाने वाले पदार्थों का उत्पादन करते हैं, जैसे सतावरी, पेंगोला घास, नीम। गेंदा अपनी जड़ों में ऐसे पदार्थ पैदा करते हैं जो कम से कम एक या अधिक प्रकार के सूत्रकृमि के लिए जहरीले होते हैं। मुख्य फसल के साथ गेंदे के पौधों के रोपण से सूत्रकृमि का प्रभाव काफी कम पाया गया है। कीट नियंत्रण में वनस्पति कीटनाशकों का ही प्रयोग करें। शत्रु एवं मित्र कीटों की पहचान करें तथा जहाँ तक संभव हो जैविक नियंत्रण को ही बढ़ावा देना चाहिए। तो किसान भाई ये तो बात हुई कि फूलों के हानिकारक सूत्रकृमि कौन कौन से होते हैं और कैसे जो आप उनकी रोकथाम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जानकारी से आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। तो हेमलता जी, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है लोकगीत का, तो आइए सुनते हैं स्मूथ स्वरों में ये लोकगीत।

0: किसान भाई, ये तो सुना आपने इस महोत्सव में प्यारा सा लोकगीत। तो हमने बात की थी जानकारी पूर्ण बातचीत के पुनः प्रसारण की। आज का विषय है वनों को आग से कैसे बचाएं। बातचीत में भाग ले रहे हैं धर्मचंद शर्मा और उनसे बातचीत कर रही हैं निशा शर्मा।
1: किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आज हमारे साथ हैं धर्मचंद शर्मा जी। धर्मचंद जी आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: आज हमारा जो विषय है वो है वनों को आग से बचाएं। तो धर्मचंद जी हम आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि वनों में जो आग लग जाती है उस आग लगने के कारण क्या क्या है।
2: मैम, ये जो वन है हमारी एक बहुमूल्य संपदा है, इसको बचाना हम सभी भारतीयों का मूलभूत जो हमारा कर्तव्य है। वनों की आग में जो लगने के कारण है, इसमें सबसे पहले कारण है लापरवाही का
1: जी।
2: लापरवाही से मतलब है जैसे जलते हुए बीड़ी सिगरेट को फेंकना जंगल के बीच। और नंबर दूसरा कारण हो सकता है जो है हमारा ये कांच के शीशे के टुकड़े जो हम जो वेस्ट होते हैं उसको जंगल के बीच में फेंक देते हैं। जैसे आजकल का जैसे मई और जून का जो सबसे उच्चतम तापमान जो हमारे सूर्य से मिलता है उस

0: के फोकस से जो है जंगल में की पत्तियों में आग लग जाती है। और तीसरा कारण जो है ये बांस के जंगल जहां है वहां जो है बांस के पेड़ टकराते हैं हवा से और उनसे भी घर्षण से जो है चिंगारी पैदा होती है, उससे भी जंगल में आग लग जाती है
1: जी।
0: अगला जो कारण है ये है गडरियों के द्वारा, जो हमारे भेड़ बकरी पालक किसान लोग हैं जिनके पास काफी सैकड़ों की संख्या में जो है भेड़ बकरियां होती हैं, वो जंगलों में ही उनका रहना रहता है, रात को भी जंगलों में ही रहते हैं और उनका जो है लगातार जीवन जंगलों में ही निकलता है।
1: हाँ
0: तो
1: जी।
0: रात को खाना बनाने या अन्य जैसे सर्दियों के दिनों में सेकने के लिए भी लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तो जंगल में लकड़ियां जो जलाते हैं उनका खुला रहना और हवा से उनकी चिंगारी उड़ करके जंगल में जो है आग लगा देती है, ये भी एक कारण है।
1: हाँ जी।
0: अगला जो कारण है वाहनों के द्वारा, जो हमारे व्हीकल्स हैं उनके जो साइलेंसर से भी चिंगारी निकलती है। अगर जंगल के बीच से भी हमारे बहुत ज्यादा रोड हैं जो गाड़ियां वहां से चलती हैं, उनके साइलेंसर से भी चिंगारी निकल के जंगलों में आग लगती है।
1: जी
0: जो अगला कारण है वो है बिजली के तारों के द्वारा, जैसे जंगल के मध्य से अगर बिजली की सप्लाई या बिजली की तारें जो 11 के वी, 32 के वी या HT LTE की लाइंस जो गुजर रही होती हैं, उनमें भी एक भारी आंधी तूफान आने से तारें या तो आपस में मिल जाती हैं, उनका नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाता है और चिंगारी निकलती है और उनमें जो है बहुत बड़ा विस्फोट भी होता है, तो वो चिंगारी निकल करके जंगल में जो बर्निंग मटेरियल है, पत्तियां हैं, घास है या चीड़ की पत्तियां हैं, उनमें जल्दी तुरंत आग पकड़ते हैं और ये कारण भी हो सकता है। कि इसके अलावा जो खंभे भी अगर ज्यादा तूफान आ जाए
1: हाँ जी।
0: तो बिजली के खंभे भी गिर जाते हैं जिससे ये जंगल में आग लगती है।
1: जी, तो देखिए शर्मा जी, वनों में आग लगने के बहुत से कारण जो हैं आपने बताए। इसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसी भी कारण से अगर वनों में आग लग जाती है तो उसको बुझाने के कौन कौन से तरीके हैं?
0: हाँ मैम, ये वनों की आग को बुझाने में हमारे कौन कौन से उपाय हैं जो हम तरीके अपनाते हैं, तो इसको सबसे पहले तो वन बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होता, बहुत ज़्यादा एरिया में फैला होता है, तो इसके लिए अगर आग बुझानी है तो हमें मैन पावर की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और ये तरीके हैं जिनसे हम इतने आदमी भी नहीं जुड़ा सकते कि भी उस आग को काबू कर सकें, और वनों को जो है गर्मी के जो मौसम से पहले पहले ही अगर वनों में हम फायर लाइन बना करके जो जिससे हम उस आग को काबू कर सकते हैं। फायर लाइन का तात्पर्य है कि जैसे हम एक बीच में एक कोई 12-15 फुट का एक स्टेप बना दिया जिसमें हम कंप्लीट उसको जो है खाली कर देते हैं और उसको एक एरिया जो है काट देते हैं, अगर नीचे से कहीं से आग लगती हुई आ रही हो तो वहाँ फायर लाइन तक पहुँचते पहुँचते उसको आगे बिल्कुल क्लियर मिलेगी, साफ सुथरी मिलेगी, वो आग वहाँ बुझ जाती है। दूसरा तरीका है काउंटर फायर कर करके, जैसे जंगल काफी एरिया में फैला है या हिली टेरेन में है, जैसे ढलानदार एरिया में है जंगल, नीचे से आग अगर जल करके आ रही हो काफी दूरी पर हो तो उसके ऊपर हम अपने लोगों को जैसे फॉरेस्ट के फायर वाचर, फॉरेस्ट गार्ड या फायर सर्विस के लोगों की भी सहायता लेकर के उसमें जो हम एक जो है काउंटर फायर कर देते हैं। जैसे आग नीचे से आ रही हो तो हम बीच में एक स्पेल ऐसा बनाते थे, कतार बांध करके जितने भी वहां जंगल में फायर वाचर हैं या फायर फाइटर्स हैं उनके कतार बांध करके उसमें हम छोटे से एरिए में अपने आप ही एक आग लगा देते हैं और साथ उसको फायर विटर के द्वारा, चाहे वो फायर विटर ये मैनुअल हो, चाहे हम जैसे हम झाड़ियों हरी टहनियों के फायर विटर बना करके एक कतार में खड़े हों थोड़ा आग लगा लें, कोई 15-20 फुट का एरिया जो है एक स्टेप हम पूरा काट करके उस एरिए में आग लगा करके उसको बुझा देंगे ताकि नीचे से जो आग जल के आ रही हो उसको आगे जलने के लिए कोई भी बर्निंग मटेरियल नहीं मिलेगा क्योंकि वो एरिया तो जला दिया होता है और आग वहीं ही रुक जाती है। ये भी एक तरीका है आग को बुझाने का। जो तीसरा जो उपाय है, तरीका है हमारा, ये है कि वनों में हम तालाब वगैरह इत्यादि का भी इसके अंतर्गत भी हम वन सरोवर बना करके बरसात का पानी है उसमें इकट्ठा करके उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं जहां कहीं जरूरत हो वनों की आग को बुझाने के लिए। इसके अतिरिक्त मिट्टी और रेत ये इत्यादि के द्वारा भी हम इस वनों की आग को बुझा सकते हैं।
1: जी,
0: तो ये तरीके हुए वनों की आग को बुझाने के, काउंटर फायर करके और फायर लाइन काट करके और वनों में बना करके पानी के सरोवर बना करके, तालाब बना करके।
1: जी जी जी, तो देखिए वनों में अगर आग लग जाती है तो आग बुझाने में किन किन परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है?
0: मैम आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, वनों की आग को बुझाने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वन काफी एरियों में

0: काफी कई हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होता है। तो जैसे ही उस आग को काबू करने के लिए भी हमें एक छोटे छोटे पार्ट बना करके ही काटना चाहिए। जैसे कोई एक एरिया जहाँ कोई मकान इन्वॉल्व हो रहे हों, बीच से हो सकता है जंगल के बीच में मकान होते हैं, तो उनके बीच हम उस एरिया को काट करके उसमें जो है उसी एरिया को बचाएं जहाँ मकान जो है उसकी गिरफ्त में आ रहे हों।
1: जी
0: और नंबर दो, जो वनों की आग में सबसे मुश्किल होता है हमारे, क्योंकि वहाँ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता है और ट्रांसपोर्टेशन, रोड की कोई भी व्यवस्था नहीं होती जंगल के, कहीं जहाँ कहीं हुए वहाँ तो हम जंगल को बचा भी सकते हैं, जहाँ रोड की व्यवस्था नहीं है वहाँ बहुत मुश्किल आती है। नहीं तो हो सकता है जहाँ रोड की व्यवस्था हो वहाँ फायर टेंडर, जो फायर व्हीकल्स हैं हमारे, वहाँ उनको ले जा करके पानी की बौछार फेंक करके भी जो है उस आग को काबू कर सकते हैं। तो लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशंस और अवंडेंट जो बहुत भारी मात्रा में फ्यूल्स होता है, पत्तियां होती है, घास होता है, ये और लकड़ी भी होती है सूखी हुई, तो इनसे बहुत ज्यादा परेशानी रहती है हमें इस आग को बुझाने में।
1: जी तो शर्मा जी, देखिए वनों में आग लग जाती है तो जो आप लोग वनों में आग बुझाने का कार्य करते हो, इसके अलावा जो ग्रामीण होते हैं नजदीक के, क्या वो भी मदद करते हैं?
0: हाँ जी मैम, ये अक्सर हमें देखा है, थोड़ा ग्रामीण अगर उनको इस विषय में उनको थोड़ा जानकारी दी जाए, अवेयरनेस लाई जाए कि भी ये वन हमारे हैं, हम इन वनों से लकड़ी का, घास पत्ती का और ये पूरा फायदा उठाते हैं कि हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने वनों को, जिससे हमारे घास पत्ती के अतिरिक्त हमारे फ्यूल वुड और ताज़ा हवा, तरोताज़ा हवा और ये बारिश लाने में भी बहुत ही कारगर हैं ये हमारे पेड़ पौधे, तो उनको हम बचा के रखें और ये हमारी बहुत ही बहुमूल्य संपदा है।
1: जी तो देखिए शर्मा जी, वनों में आग लग जाती है तो जो हमारे ग्रामीण हैं एकदम से घबरा जाते हैं, जो वनों के नज़दीक रहते हैं, वनों के नज़दीक उनके घर हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: हाँ, ग्रामीण लोगों के लिए मैंने अक्सर ये मैं देखा है, जो गांव में लोग हैं उनके नज़दीक अगर जंगल हैं, उनका एक सबसे बड़ा जो उनके लापरवाही का जो कारण रहा कि वो अपने एक छोटे से फायदे के लिए, जैसे आग लगने का एक कारण जो कि वो अपने एक छोटे से फायदे के लिए कि अगर मेरा ये जंगल अगर साफ होगा उसमें वो आग लगा देते हैं, क्योंकि उससे मुझे जो है हरी घास या ताज़ा घास निकलेगी और वो मेरे पशुओं को खिलाने के काम आएगी।
1: हाँ जी।
0: तो ये उनकी गलत धारणा है। आग लगने से हो सकता है वो आग कितनी दूरी तक फैल जाए और उसमें उस जंगल में रह रहे कितने जीव जंतुओं का जल करके जो है उनकी मृत्यु हो जाती है और हम ये पाप के भागी बन जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसे ये गलती कभी ना करें कि हम अगर इसको जला दें इससे हमें हरी घास पत्तियां मिलेगी। ये गलत धारणा और इससे आग उनके फायदे के लिए नहीं, ये बहुत एरिया में आग फैल सकती है और जिसको काबू नहीं किया जा सकता। आग लगने से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इससे हम वंचित हो जाते हैं हरी घास से, पत्तियों से, लकड़ी से, ताजा हवा से।
1: जी तो शर्मा जी, देखिए ऐसी स्थिति में हमारे जो ग्रामीण हैं वो क्या कर सकते हैं?
0: हाँ, अगर आग लग जाए किसी भी ग्रामीण के सराउंडिंग में या घरों के नज़दीक या कहीं भी उनको आग दिख जाए, तो इस स्थिति में सर्वप्रथम जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण लोग कोशिश करें और इसके साथ साथ वो तुरंत जो फॉरेस्ट के फायर वॉचर्स, फॉरेस्ट गार्ड, वीट गार्ड, बीओ और आरओ तक फोन करें और तुरंत इसके साथ साथ ही फायर ब्रिगेड को भी, अगर वहाँ रोड की व्यवस्था है तो तुरंत फायर ब्रिगेड को भी सूचना दें कि फ्लाइंग जगह में इधर जो है जंगल में आग लगी है, और कॉल करने वाला अपना सही नाम बताए और मेरा ये गांव है और यहाँ तक रोड आता है, यहाँ तक आपकी बड़ी व्हीकल आ सकती है, और अपना संपर्क नंबर दें जो टेलीफोन नंबर है। आपात स्थिति की प्रकृति बताएं कि आग किस प्रकार की है, आग हो सकता है कहीं मकान में तो नहीं नजदीक आ गई है, ये भी तुरंत बता दें, और जंगल में है तो जंगल वाली बताते, और नजदीक का कोई पहचान स्थान हो सकता है कोई ऐसी जगह हो जहां तक फायर ब्रिगेड कभी आई ना हो, थोड़ा वो एक जो प्रोमिनेंट प्लेस है वहां का वो बता दें कि भी ये मार्ग है और ये मकान है और ये जगह है, और घटना स्थल पर आसानी से पहुंचने का छोटा रास्ता बताएं कि हम किस छोटे से छोटे रास्ते तक वहां उस जंगल तक या उस घर तक पहुंच जाएं, ताकि अगर जितना ज्यादा हम रिस्पॉन्स टाइम हमारा ज्यादा होगा तो नुकसान उतना ही मल्टीप्लाई हो जाए, उतना ही गुना बढ़ जाएगा जितना जल्दी हमें कॉल करेंगे किसी भी जंगल की आग में, चाहे मकान की आग भी हो, जितना जल्दी रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा नुकसान भी उतना ही कम होगा, और ये ध्यान रखें कि ये हमें जो है तुरंत सूचना दें।
1: जी, इसके अलावा शर्मा जी देखिए, वनों को आग से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है?
0: हाँ मैम, ये बहुत एक

0: एक लाभदायक इन्फॉर्मेशन भी है सभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए कि जब जब कभी भी हो ये कभी भी लापरवाही ना करें कि कोई जलती माचिस की तिल्ली या जलता कुछ आग जंगल में हमने खुले में रख दी। नंबर दो, जो भी बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं ये इंश्योर करें, अगर जंगल के रास्ते से वो निकल रहे हो तो ये इंश्योर करें कि अगर बीड़ी सिगरेट पी रहे हो उसको पूरे रूप से पूर्ण रूप से उसको बुझा करके ही आगे चलें, ना
1: जी
0: कि खुले जंगल में फेंक दें। और जितना भी कांच के टुकड़े या दूसरे शीशे के टुकड़े हैं कोई भी हो उनको कभी भी जंगल में ना फेंके।
1: जी
0: और दूसरा, जो विशेषकर जो हमारे भेड़ बकरी पालक हैं जिनका पूरा जीवन जंगल में ही निकलता है, और वो ध्यान रखें कि जहाँ कहीं भी वो रात को वहाँ रह रहे हों, जहाँ वो अपनी रात निकालते हों या वहाँ लकड़ी का प्रयोग करते हों जलाने के लिए या खाना पकाने के लिए या सेंकने के लिए भी, तो ये ध्यान रखें कि जब वो सो जाते हैं उससे पहले पहले ही आग को पूर्ण रूप से बुझा दें।
1: जी
0: नंबर दो, जब भी कहीं और दिन में भी कहीं आग जलाते हों वहाँ से निकलने से पहले, उस जगह से निकलने से पहले उस आग को पूर्ण रूप से बुझा दें। और जो व्हीकल्स हैं,
1: जी
0: गाड़ियां हैं, इनमें जो है स्पार्क अरेस्टर लगे होते हैं, जो तो स्पार्किंग जो निकलती है या चिंगारी निकलती है उनको जो है चलते चलते जो है वो अरेस्ट हो जाती है, तो स्पार्क अरेस्टर गाड़ी में लगाने चाहिए ताकि वो चिंगारी जंगल की तरफ ना जाए और जंगल की आग को हम बचा सकें। और बिजली की तारों का, विशेषकर इसमें भी डिस्टेंस है बिजली की तारों का, वो एक उपयुक्त जो उचित दूरी उसमें रखें, और खंभे जो खड़े करते हैं उनमें भी विशेष करके मजबूती से उनको जो है खड़ा करें ताकि हल्के से या थोड़ी सी हवा तूफान आने से ही वो गिर जाए और उनमें चिंगारी निकल के जंगलों में आग लगे। तो ये कुछ उपाय हैं, कुछ टिप्स हैं जिससे हम इस अमूल्य वन संपदा को बचा सकते हैं।
1: जी तो देखिए शर्मा जी, हमारे जो किसान बागवान हैं, हमारे जो ग्रामीण हैं, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, वनों को आग से बचा सकते हैं।
0: हाँ
1: जी तो इसके अलावा देखिए, आप अंत में हमारे किसान बागवान और हमारे ग्रामीण भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हाँ वनों के साथ साथ, जैसे वनों के बीच ही हमारा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का बहुत सारा क्षेत्र जो है वनों से घिरा हुआ है और मकान भी वनों के बीच में है, हो सकता है जंगल से आग बढ़ती हुई कहीं मकान के नज़दीक मिली, और ऐसे हादसे हमने कई बार देखे हैं और ऐसी आगें भी बुझाई हैं जिससे जंगल से लपटें निकली और सीधी मकान की दूसरी मंजिल ने या पहली मंजिल ने सीधी लकड़ियों ने आग पकड़ ली और उसमें आग लगी और आग से पूरा घर तबाह हो गया।
1: जी
0: तो ये जानकारी रहेगी कि कभी भी अपने जो जंगल क्षेत्र में, जंगल के एरिया में जिनके भी मकान हैं वो अपने 20 मीटर के एरिया, सराउंडिंग एरिया तक बिल्कुल उसको नीट एंड क्लीन, जिसको अपने बिल्कुल साफ सुथरा, कोई झाड़ियाँ, सूखा घास या कोई चीड़ की पत्तियाँ, जिन्हों पाइन ट्रीज जो लीव्स हैं इनके जो पत्तियाँ हैं ये बहुत तेजी से आग को बढ़ाती हैं, ये सारा एरिया एकदम साफ सुथरा रखें।
1: जी
0: और दूसरा, अगर घरों में कहीं आग जो लग भी जाए तो उस वक्त हमें संयम नहीं खोना चाहिए, बहुत ही धैर्य से काम लेना चाहिए, तुरंत कोशिश करें क्योंकि मौके पर वही फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, हो सकता है आग एक छोटी सी आग से शुरुआत हुई है, वो कभी एकदम भयंकर आग नहीं होती, अगर उस आग को इनिशियल स्टेज पे ही प्रारंभिक स्थिति में उसको बुझा दिया जाए तो
1: जी
0: वो आग तुरंत काबू हो जाती है, अगर वहां घबरा गए या भाग गए कभी आग
1: हाँ
0: लगी
1: जी हाँ
0: तो
1: जी
0: वहां वो आग एक बहुत भयंकर रूप धारण कर सकती है और पूरे जान और माल का नुकसान कर सकती है।
1: जी यानी कि संयम की बहुत आवश्यकता है।
0: जी मैम,
1: जी तो देखिए धर्मचंद शर्मा जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने दी, वनों को आग से कैसे बचाएं इसके बारे में। इन सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।
2: किसान भाइयों, अभी आपने सुना जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण। विषय था वनों को आग से कैसे बचाएं। इस विषय पे जानकारी दे रहे थे धर्मचंद शर्मा और उनसे बातचीत कर रही थी निशा शर्मा। तो हेमलता जी, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और लोकगीत का, तो आइए सुनते हैं उमा कौशल की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान भाई, ये तो सुना आपने उमा कौशल की आवाज में प्यारा सा लोकगीत। बात कर लेते हैं कल के मुख्य आकर्षणों की। काम की बातों में बात करेंगे, पौष रक्षण रसायनों का सुरक्षित प्रयोग, साथ में मनोरंजन करवाएंगे प्यारे से लोकगीत के साथ। जानकारी पूर्ण बातचीत का विषय रहेगा बदलते मौसम में कृषि पर प्रभाव। तो इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी श्रोताओं से अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक।

0: न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स और FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। 7:45 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार थोड़ी देर में प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार DTH सेवा और मोबाइल

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रदेश के 8 पारंपरिक उत्पादों को मिला जीआई टैग। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने नशा मुक्त भारत के संकल्प को सफल बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों से योगदान का किया आह्वान। प्रदेश में मॉनसून की भारी वर्षा से कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़क मार्ग अवरुद्ध। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन 4 जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और धर्मशाला नगर निगम में महापौर व उप महापौर के चुनाव में भाजपा की जीत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कृषि महत्व वाले 8 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई पंजीकरण मिल गया है। इनमें स्पीति का सिबकथॉर्न, सलूणी सफेद मक्का, चंबा मेटल आर्ट, सिरमौरी लोया, मंडी की सेपूबड़ी, किन्नौरी टोपी व सेब और किन्नौरी आभूषण शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों की मौलिकता व पहचान सुरक्षित रहेगी और बाजार में इनकी मांग बढ़ने के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीआई टैग मिलने से जनजातीय समुदायों, कारीगरों, बुनकरों, किसानों और पारंपरिक उत्पादकों की आजीविका को मजबूती मिलेगी। इन 8 नए उत्पादों के साथ अब हिमाचल के कुल 17 पारंपरिक उत्पादों को हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद के माध्यम से जीआई पंजीकरण मिल चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि एचएएस व संबद्ध सेवाओं के अधिकारियों की राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में उनसे मिलने आए वर्ष 2026 बैच के हिमाचल प्रशासनिक सेवा व संबद्ध सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, समर्पण और सेवाभाव के साथ लोगों की सेवा करने का आह्वान किया। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और सुशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता, बिना किसी भेदभाव से पहुंचाने का आह्वान किया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी, बल्कि विकसित गाँव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने नशा मुक्त भारत के संकल्प को सफल बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों से योगदान देने का आह्वान किया है। राज्यपाल आज लोकभवन शिमला में अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा आयोजित एलिवेट एक्सपीरियंस द रियल हाई अ स्टेप टुवर्ड्स ड्रग फ्री हिमाचल अभियान के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सोसाइटी के राज्यव्यापी नशा जागरूकता अभियान का शुभारंभ भी किया। राज्यपाल ने इस पहल को नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह अभियान नशे की बेड़ियों से मुक्त भारत के निर्माण का राष्ट्रीय संकल्प है, जहां युवा अपनी प्रतिभा, दृढ़ निश्चय और मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त करेंगे। कविंद्र गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए इस अभियान को प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर पर लागू करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं को नशे से सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान सहित अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, समाज सेवियों और युवाओं ने भाग लिया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के पूह गांव में जनसमस्याएं सुनी और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए। बाद में उन्होंने पूह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। जगत सिंह नेगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया, ताकि पात्र लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने नव निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी अपने संबंधित क्षेत्रों में पारदर्शिता व निष्पक्षता से विकासात्मक कार्यों को पूरा करने का आह्वान किया। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में आज व्यापक वर्षा हुई। भारी वर्षा से कुछ स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे कई स्थानों पर सड़क मार्ग अवरुद्ध रहे। उधर चंबा जिला की जनजातीय पांगी घाटी में घिसल नाले में बादल फटने से साच सैचू संपर्क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। बादल फटने के कारण आई बाढ़ से सड़क का बड़ा हिस्सा तेज बहाव में बह गया। हालांकि लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग बहाली का कार्य किया जा रहा है। इधर लाहौल स्पीति जिले की रानिका पंचायत के पढ़ाक गांव में बादल फटने और भारी बारिश के चलते किसानों की गोभी सहित अन्य फसलें मलबे में दबकर पूरी तरह नष्ट हो गईं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि आगामी एक सप्ताह तक मॉनसून के बेहद सक्रिय रहने की संभावना है।
1: मानसून जो है पूरे प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाला है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो पूरे प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगभग सभी जिलों में, सिर्फ किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ के अगले 5 दिनों तक अलग अलग स्थानों पर हमें लगातार देखने को मिलता रहेगा, जिसमें अधिकतम बारिश हमें 2 जुलाई 3 जुलाई को देखने को मिलेगी। 4 जुलाई को बारिश में थोड़ी सी कमी होगी, 5 जुलाई से बारिश एक बार फिर से बढ़ती होने जा रहेगी। मुख्यतः हमारा जो कांगड़ा जिला है, शिमला जिला है, मंडी और सिरमौर जिला है, वहां पर 2 जुलाई 3 जुलाई और 5 जुलाई को जो है भारी से अत्यधिक भारी बारिश को ध्यान रखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
0: इस बीच भारी वर्षा से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी नालों के समीप व संवेदनशील इलाकों में न जाने की सलाह दी है। धर्मशाला नगर निगम में महापौर और उप महापौर के चुनाव में भाजपा ने निगम की सत्ता पर कब्जा जमा लिया है। भाजपा के शमशेर नहरिया महापौर जबकि प्रेरणा गुलेरिया को उप महापौर चुना गया है। भाजपा की इस जीत को धर्मशाला की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि नगर निगम चुनाव में मिला ये जनादेश विकास की राजनीति पर जनता की मुहर है और इससे संगठन को भविष्य में भी मजबूती मिलेगी। वहीं नवनिर्वाचित मेयर शमशेर नहरिया ने कहा कि वे सभी पार्षदों को साथ लेकर धर्मशाला के समग्र विकास के लिए कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि राज्य सरकार आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने आज हमीरपुर जिले में धनेड़ क्षेत्र के खटवी गांव में जनसमस्याएं सुनी और लोगों को राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याण

0: कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास और ग्रामीणों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए अनेक सराहनीय निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती से उगाई जाने वाली गेहूं, मक्की और कच्ची हल्दी के लिए भी अलग से उच्च दाम निर्धारित किए हैं। पूर्व स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री राजा विजेंद्र सिंह का आज सुबह दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे और पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। विजेंद्र सिंह वर्ष 1977 में पहली बार नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य चुने गए थे और वे 5 बार विधानसभा सदस्य रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजा विजेंद्र सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण के लिए किए गए विजेंद्र सिंह के कार्यों को प्रदेशवासी सदैव याद रखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी विजेंद्र सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि वे गरीब व असहाय लोगों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 8 पारंपरिक उत्पादों को मिला GI टैग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने नशा मुक्त भारत के संकल्प को सफल बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों से योगदान का किया आह्वान। प्रदेश में मॉनसून की भारी वर्षा से कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़क मार्ग अवरुद्ध। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन 4 जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और धर्मशाला नगर निगम में महापौर व उप महापौर के चुनाव में भाजपा की जीत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए रोजगार समाचार। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी कंडाघाट जिला सोलन से प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 2 पद और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 9 पदों को भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2026 है। आवश्यक योग्यताएं इस प्रकार से हैं। उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए तथा संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के लाभान्वित क्षेत्र में 1 जनवरी 2026 को सामान्य रूप से रह रहे परिवार से संबंध रखती हो। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10.2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार द्वारा जारी अथवा प्रति हस्ताक्षर किया होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ जो प्रमाण पत्र लगाने हैं, स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, अन्य कोई प्रमाण पत्र यदि हो तो। अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी कंडाघाट

0: जिला सोलन के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क किया जा सकता है। रोजगार समाचार समाप्त हुए। अभी आप सुन रहे थे रोजगार समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। 8 बज चुके हैं, लेकर हाजिर हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। आपके साथ मैं रहूंगी ऋचा शर्मा। गीतों के गुलदस्ते से गीतों के रूप में फूल चुन के लाए हैं आपके लिए। दिल की धड़कनों में छुपी है जिनकी कहानी, कुछ ऐसी सदाबहार धुनें जो कभी नहीं होती पुरानी। उन सुनहरे दिनों की सैर जहां नदियां भी रुककर सुनती थी गीत और हवाएं भी राग छेड़ती थी। दरवाजा खोलते हैं यादों के उस संदूक का और सुनते हैं कुछ भूले बिसरे गीत। पतंगा फिल्म का गीत आपके लिए लेकर आए हैं शमशाद बेगम की आवाज में।
2: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: संगीत वो भाषा है जो दिल की बात बिना कहे बयां कर देती है। प्यार की वो मासूमियत, वो इंतज़ार, वो कसक जो सिर्फ पुराने गानों में ही महसूस होती है। आबरू फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।
1: हर चेहरा यहाँ चांद

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी।
1: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

एक श्रीमान एक श्रीमती, इसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोर, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कुछ पल के लिए थम सा जाता है समा, जब गूंजती है कोई पुरानी और मीठी दास्ता। अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं हमसाया फिल्म से, आशा भोसले की आवाज़ है और पीन अय्यर का संगीत।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध है समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं

0: अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
1: दुनिया फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। वो गीत जो कानों में रस घोल जाते हैं, वो बीते हुए लम्हों को फिर से जिंदा कर जाते हैं।

भूले बिसरे गीत अभी आप सुन रहे थे एफएम शिमला के साथ। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। शुक्रवार यानी 3 जुलाई 2026 प्रातः 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम लोकवाणी का विषय है हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल। श्रोताओं, यदि आप इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो आप हमें शुक्रवार यानी 3 जुलाई 2026 को प्रातः 8:45 से 9:15 के बीच फ़ोन नंबर 2808034 और 2808152 पर संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। सूचना समाप्त हुई। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं एफएम शिमला के साथ और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

तारे ज़मीन पर फिल्म का गीत अभी आपने सुना शंकर महादेवन की आवाज़ में, प्रसून जोशी के बोल थे और शंकर एहसान लॉय का संगीत। अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं यारियां फिल्म से, आवाज़ है केके की।

0: प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में VBG रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, VBG रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूप

फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही, 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार संध्या 9 बजे न्यूज़ @9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुँच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री

0: शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत के समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. the headlines.

आज आपको हम सुनवाएंगे हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म के गीत। फिल्म का नाम भी हमारे रिश्ते जैसा ही है, आप हमारे और हम आपके दिल में रहते हैं।

0: 1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
0: आज ही आवेदन करें हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म के निर्देशक सतीश कौशिक, मुख्य भूमिकाओं में अनिल कपूर, काजोल, परमीत सेठी, सतीश कौशिक, ग्रेसी सिंह और साथी कलाकार। फिल्म के गीत समीर ने लिखे, संगीत अनु मलिक का और गीतों में आवाजें कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल और अभिजीत की थी।

इस फिल्म में अमीर बिजनेसमैन और एक मिडिल क्लास लड़की के बीच एक अनोखे सौदे यानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर आधारित ये फिल्म थी। शादी के बाद दोनों के बीच प्यार और फिर गलतफहमियों के बाद एक दूसरे को समझने की यात्रा को इस फिल्म में दिखाया गया है। रिलीज हुई ये फिल्म 1999 में और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर सिद्ध हुई।

एक फिल्म से कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 9:30 हुए हैं। वक्त है ईमेल बेस्ड प्रोग्राम जिसका नाम है दिल की आवाज भी सुन। आपके दिल की आवाज हम तक पहुंचती है आपकी मेल्स के जरिए, तो बिना देरी किए हमें कीजिए मेल हमारे ईमेल आईडी पर AIRFM शिमला म्यूजिक मेल @gmail.com। और आज की फिल्में हैं जब प्यार

किसी से होता है, प्यार किया तो डरना क्या, हाँ मैंने भी प्यार किया है, जानम समझा करो प्यार तूने क्या किया। इन फिल्मों के गीत आप सुन सकते हैं अब से लेकर ठीक 10 बजे तक। हमारा ईमेल आईडी है AIRFM Shimla Music Mail@gmail.com। आपकी मेल्स भी हम तक पहुंचना शुरू हो चुकी हैं, तो बिना देरी किए हम उन्हें शामिल करते हैं प्रोग्राम में। गुड इवनिंग लिखकर हमें भेज रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल विलिस डिकेस्ट्रो और इनके दोस्त भी हैं अब्दुल गफार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर, भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से ये हमें मेल कर रहे हैं। नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से इनका मेल आया था। और भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी भी इनके साथ सुनना चाहते हैं गीत। पद्मा कॉटेज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विनी मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह भी इनके साथ सुनना चाहते हैं गीत। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक भी इनके साथ हैं। नेक्स्ट मेल है जो हम तक पहुंची अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और जयपाल यादव। इनके साथ ही साथ ग्राम पजनोया जिला जलौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया, बागवान मंजिल छोटी बलिया से नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक अहमद बागवान, आमना आसमा, राबिया परी, आशु जूही, सदफ आरजू बागवान हमें मेल कर रहे हैं, सुनना चाहते हैं ये भी गीत। सिद्धार्थ नगर दयापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, शेरी वडनेर अकोला से आदित्य दामोदर, अरुणा दामोदर और ये भी सुनना चाहते हैं गीत। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, मिनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं ये गीत।

चलिए प्रोग्राम में नेक्स्ट मेल्स जो हम तक लगातार पहुंच रही हैं बिना देरी के उन्हें शामिल करते हैं। ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। सुनना चाहते हैं प्यार किया तो डरना क्या फिल्म से गीत। इसी फिल्म के लिए पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक, नरेश कुमार पॉल, पूरा पॉल परिवार हमें सांगवाई जालंधर पंजाब से ये मेल कर रहे हैं और ये भी सुनना चाहते हैं इसी फिल्म का गीत। ग्राम गुरावा मध्य प्रदेश से नंदलाल राजपूत, राजू राजपूत, मनुका बाई, नंदनी बाई और रुद्र राजपूत भी इनके साथ हैं। ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दीवांशी विश्वकर्मा भी मेल कर रहे हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। नेक्स्ट मेल जो हम तक पहुंची है कुंभार गली गोलगांव से पांडू चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा, प्रथमेश चंदन, पांडुरंग कुंभार और थैंक यू लिखकर हमें भेज रहे हैं। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, चेतन नाहटा और थैंक यू भी ने लिखकर हमें भेजा है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगेजा, पूनम गंगेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा सुनना चाहते हैं गीत। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी का मेल भी हम तक पहुंचा है, ये भी सुनना चाहते हैं फिल्म का गीत। राहट गांव कैंप अमरावती से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और इनके फैमिली मेंबर सुनना चाहते हैं ये गीत।

चलिए लगातार आपकी मेल्स हम तक पहुंच रही है बिना देरी के, हम आपकी मेल्स प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज भी सुनना चाहते हैं गीत। नेक्स्ट मेल है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक गोरैया जलंधर से हमें मेल कर रहे हैं। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज घोरवाल, कमला रानी, गीतिका घोरवाल और भानु प्रकाशन के साथ है। गुड इवनिंग लिखकर हमें भेजा है अनिल शर्मा, इंदु शर्मा, ऋचा शर्मा, दर्पण शर्मा, लवदीप शर्मा, नैन्सी शर्मा, गुड्डू, माधव शर्मा, सोनाम पंजाब से हमें मेल कर रहे हैं। अहमद भाई फूलवाले, नूर आयशा अहमद, इमरान अहमद, जूही इकबाल, सदफ इकबाल अहमद, आरजू और इनके सभी फैमिली मेंबर, छोटी बलिया, मुंबई करजत से हमें ये मेल कर रहे हैं। गुलाम साबिर राही, ताज मोहम्मद अंसारी, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये मेल हम तक पहुंचा है। इसी के साथ मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आराध्या सुरलकर का भी मेल हम तक पहुँच चुका है। चिरमिरी कोरसिया, कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंदरी लहरे का मेल भी हम तक पहुंच चुका है। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर उत्तराखंड से हमें मेल कर रहे हैं। बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष का मेल हम तक पहुंचा है। निमनाबाद जिला जींद, जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत कौर और इनके फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट मेल है, ये रिपीट हो रहे हैं शायद, और मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना बुशरा, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि, ऊंचे गांव नांदेड़ से देवानंद शिंदे पाटिल और इनके फैमिली मेंबर्स, कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना मोहम्मद कैफ अंसारी। और एक और मेल प्रोग्राम में शामिल करते हैं, ये है ज़िला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मन्नू और इनके फैमिली मेंबर्स, यशमीत, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या, अविरल सिंह, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हमें ये मेल कर रहे हैं। सबा अंसारी का मेल प्रोग्राम में शामिल हो चुका है। एक और मेल जो हम ले रहे हैं, कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहाँ बेगम और मरियम जैनब का मेल हम तक पहुंचा है और हम इन्हें प्रोग्राम में भी शामिल किया है। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया और इनके फैमिली मेंबर्स सुनना चाहते हैं ये गीत।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपके प्रोग्राम में मेल शामिल करते हैं। देवरी भाटापारा से KR साहू, आकाश, कमलेश, गन्नू लाल, रजक, मुरली क्षत्रिय, जानम समझा करो फिल्म का गीत सुनना चाहा। ऐसी फिल्म के लिए भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा, प्रेमजोत कौर, आशा सपकाल, किशन सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज, विशाल सपकाल हमें शास्त्री नगर बीड शहर से मेल कर रहे हैं। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुगू भाविका सिक्का भी इनके साथ हैं। जवाहर नगर उदयपुर से भारती देवी, बाबू भाई, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखे लाल वर्मा हमें भाटापारा छत्तीसगढ़ से मेल आया है। घनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी नौशाद और आलिया आयान बाबू, और इसी के साथ हिपर सोगा तहसील जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख और करिश्मा शेख भी इनके साथ हैं। मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना मैंडी शर्मा भी हैं और ये सुनना चाहते हैं गीत। नेक्स्ट मेल है मॉडल टाउन करनाल से किरण ठाकुर, सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, शमा हरी और प्रतिभा पाल कौर, आशा गुगलानी, शशि बाला भी इनके साथ सुनना चाहते हैं इसी फिल्म का गीत। चिरंबरी कुरसिया से मेल प्रोग्राम में शामिल हो चुका है। बिलराम से इरशाद अहमद, शाहजहाँ बेगम और मरियम जैनब का मेल हमें प्रोग्राम में शामिल कर चुके हैं। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा का मेल आया है। राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौसीर अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी हमें जैन मंदिर वाली गली कुरावली से ये मेल कर रहे हैं। इसके साथ ही अस्तुपुरा ज़िला मऊ से मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल आज़ाद और थैंक यू लिए भी लिखकर हमें भेज रहे हैं। नेक्स्ट मेल है मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत, रोजस।

चंडीगढ़ से शेफाली शेफी डेविस बिमला और सतीश अनेजा इनके साथ सुनना चाहते हैं गीत। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया। और एक और मेल जो हम तक आया है ये है अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, पुनावले, अजय सोनवरे, करिश्मा और अविका कुंभार गली श्रीरामपुर से ही हमें मेल कर रहे हैं और सुनना चाहते हैं ये गीत।

चलिए समय आप बहुत थोड़ा बचा है तो जल्दी से आपके नाम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से रेखा बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता और अंबिका तनुश्री इनके साथ सुनना चाहते हैं प्यार तूने क्या क्या फिल्म का गीत। शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर लुबना, आलिया अंसारी का मेल हम तक पहुंचा है। इसी के साथ संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से हमें मेल कर रहे हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा का मेल हम तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट मेल जो आया है ये है हमारे पास किशन छपकाल का, जो प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं। फ्रांसिस जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी।

और इनके फैमिली मेंबर्स। तो अब लगता है आपकी मेल्स रिपीट हो रही हैं। पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति शिवांश और ये भी सुनना चाहते हैं इसे फिल्म का गीत। तो अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। उत्तर प्रदेश से हमें ये मेल कर रहे हैं धाणी नांदूरा महाराज से, श्री कृष्ण बांठे, संदीप बांठे, अमूल्य बांठे इनके साथ हैं। हर्ष विनय विनीत रोजस भाई का मेल प्रोग्राम में शामिल हम कर चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना मेल एक ही बारी में आकर आप भेजेंगे तो हम औरों के नाम भी प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए अब लगता है मेल सारी पूरी हो चुकी हैं। एक और मेल जो हम देख रहे हैं, दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा चौटाला हरियाणा से हमें मेल कर रहे हैं। सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना गोडाने, प्रणय और हीरामन शेंडे अमरावती से हमें मेल कर रहे हैं। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं ये गीत।

ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप एफएम शिमला के साथ 10 बजे हैं। अब लुत्फ उठाइए गज़लों का।

रात की तन्हाई में अक्सर पुरानी बातें दस्तक दे जाती हैं। कुछ अधूरी सी यादें फिर दिल को भारी कर जाती हैं। बीते लम्हों की वो परछाइयाँ हर पल साथ निभाती हैं। वक्त भले ही आगे बढ़ जाए पर यादें वहीं ठहर जाती हैं।

कलम से लिख नहीं सकते उदास दिल के अफसाने, हम तुम्हें दिल से याद करते हैं, बाकी तुम्हारे दिल की तो खुदा ही जाने।

ज़िंदगी एक हसीन ख्वाब है, इसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ब खुद खुशी में बदल जाएगा, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए।

गज़लों का लुत्फ अभी आप उठा रहे थे एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं एफएम शिमला के साथ। अब वक्त है सदाबहार गीत सुनने का। नजराना फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

साथ देने के समय ज्ञान नहीं देना चाहिए। डूबते हुए इंसान को बचाया जाता है, तैरना नहीं सिखाया जाता। प्रेम बंधन फिल्म का गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। शुक्रवार यानी 3 जुलाई 2026 प्रातः 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम लोकवाणी का विषय है हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल। श्रोताओं, यदि आप इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो आप हमें शुक्रवार यानी 3 जुलाई 2026 को प्रातः 8:45 से 9:15 के बीच फ़ोन नंबर 28083 28081852 पर संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। फ़ोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए 2808034 2808152 और हमारा STD कोड है 0177। सूचना समाप्त हुई।

नूरी फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। अगला गीत लेकर आए हैं महबूबा फिल्म से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

सदाबहार नगमे अभी आप सुन रहे थे एफएम शिमला के साथ। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी

0: दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज AP मॉलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और DR कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक DR कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometre long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Mark in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the cabinet also approved the construction of the 117.7-kilometer-long Kanpur-Kaburai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen, or Viksit Bharat Ji Ramji Act 2025 has come into force across the country today. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government also notified revised wage rates under the VBG Ramji Act 2025 for all states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described today as an unprecedented day for rural India.